सुप्रभात, ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज दिन शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की तिथि 5, तदनुसार 26 जून 2026। इस समय सुबह के 5:59 होने वाले हैं। अब शुरू होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रिले समाचार बुलेटिन।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्बनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें। आज सुनिए वार्ता मुर्गी पालन की विधि।

किसान भाइयों जोहार। आज हम बातें करेंगे मुर्गी पालन के बारे में। मुर्गी पालन कम पूंजी, कम जगह और कम समय में शुरू किया जाने वाला एक अत्यधिक लाभदायक व्यवसाय है। यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों के लिए आय का एक बेहतरीन साधन है, जो अंडे और मांस के रूप में प्रोटीन की मांग को पूरा करने के साथ साथ रोजगार भी प्रदान करता है। मुर्गी पालन से बहुत जल्दी आमदनी शुरू हो जाती है। ब्रॉयलर मुर्गियां जो मांस के लिए पाला जाता है कुछ ही हफ्तों में तैयार हो जाती है, जबकि लेयर मुर्गियां जिसे अंडों के लिए पाला जाता है लगभग 20 हफ्ते बाद अंडे देना शुरू कर देती है। बाजार में इनकी मांग पूरे साल बनी रहती है, जिसे किसानों को नियमित आय प्राप्त होती है। इस व्यवसाय को घर के पिछवाड़े में सिर्फ 20 से 25 मुर्गियों के साथ भी शुरू किया जा सकता है। बड़े स्तर पर भी पोल्ट्री फार्मिंग के लिए बहुत बड़े खेत या भारी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। मुर्गी पालन के लिए फार्म को शहर के शोरगुल से दूर शांत और ऊंचे स्थान पर बनाएं, ताकि बारिश में पानी न भरे। मुर्गी घर की लंबाई पूर्व से पश्चिम दिशा में होनी चाहिए और दीवारों में जालीदार खिड़कियां होनी चाहिए, ताकि ताजी हवा का संचार बना रहे। प्रति ब्रॉयलर लगभग 1 वर्ग फुट जगह होनी चाहिए। फर्श पर धान की भूसी की 2 से 3 इंच मोटी परत बिछाएं। मुर्गियों को उनकी उम्र के हिसाब से प्रोटीन, विटामिन और खनिजों से युक्त संतुलित दाना दें। किसी भी पोल्ट्री फार्म में 24 घंटे साफ और ताज़ा पीने का पानी उपलब्ध होना चाहिए। मुर्गियों का मल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से भरपूर होता है, जो पौधों के लिए एक शक्तिशाली जैविक खाद का काम करता है। इसका उपयोग खेती और बागवानी में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। यदि आप बड़ा व्यवसाय करना चाहते हैं तो कमर्शियल ब्रॉयलर या लेयर मुर्गियां पाल सकते हैं। वहीं यदि आप घर पर या कम खर्चे में व्यवसाय करना चाहते हैं तो देसी मुर्गी पालन भी एक बहुत अच्छा और महंगा बिकने वाला विकल्प है। यदि हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में मुर्गी पालन एक अत्यधिक लाभदायक और तेजी से बढ़ने वाला व्यवसाय है। राज्य की जलवायु और ग्रामीण परिवेश इसे पोल्ट्री फार्मिंग के लिए आदर्श बनाते हैं। राज्य सरकार के द्वारा नाबार्ड और महिला स्वयं सहायता समूह के सहयोग से इसमें सब्सिडी और ऋण की सुविधा भी दी जाती है। झारखंड में आमतौर पर कुछ मुर्गियों की नस्लें हैं जो पाली जाती है, जैसे कि सोनाली। ये ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी भारी मांग है और यह कम जोखिम वाली नस्ल मानी जाती है। झारसीम बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और ICAR द्वारा झारखंड की जलवायु के लिए विशेष रूप से विकसित की गई दोहरे उद्देश्य वाली मुर्गी है, जिसमें अंडे और मांस दोनों के लिए इसे पाला जाता है। ब्रॉयलर नस्ल की जो मुर्गी होती है वह व्यावसायिक मांस उत्पादन के लिए सबसे आम है। उच्च पोषण और औषधीय गुणों के कारण कड़कनाथ जैसी नस्लें राज्य में काफी पसंद की जाती है। झारखंड मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत पशुशाला निर्माण, चूजों और उपकरणों की खरीद पर 50% तक की सब्सिडी दी जाती है। समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत 3000 क्षमता का ब्रॉयलर फार्म खोलने पर सामान्य वर्ग के किसानों को 30% या अधिकतम 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्राप्त हो सकती है। अपने निकटतम जिले के KVK से संपर्क करके आप मुर्गी पालन की निःशुल्क या कम खर्चीली ट्रेनिंग ले सकते हैं। मुर्गी पालन ने झारखंड में कई ग्रामीण महिलाओं और युवाओं की तकदीर बदली है। तो किसान भाइयों, यदि आप भी मुर्गी पालन के बारे में सोच रहे हैं तो देरी किए बिना आप इस व्यवसाय को आरंभ कर सकते हैं और इससे अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए अनुमति। जोहार।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है चिंतन। किसी ने कहा है कि एक सेकंड बाद ये काम करूंगा, ऐसा विचार आना भी आलस्य ही है। हम इसे समझकर तत्परता को अपना लें तो पछतावे की नौबत नहीं आएगी। आज का काम आज ही नहीं अपितु अभी करने का नैतिक संकल्प लें। ये था आज का चिंतन।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं देश वंदना।

सुन रहे थे कव्वाली। इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है रामचरितमानस। कलाकार हैं अनुराधा मराठे, संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

राजर्षि जनक की यज्ञशाला जहां सीता जी का स्वयंवर आयोजित है। सभी राजे महाराजे अपनी सुंदरतम वेशभूषा धारण किए बैठे हैं। रंगभूमि में जनक सुता का प्रवेश होते ही देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए, पुष्प वर्षा करती अप्सराएं गाने लगीं। चकित चितवन से सीता जी ने श्री राम को देखा, किंतु गुरुजनों तथा उपस्थित अतिथि समाज को देखकर वो सकुचा गईं। श्री राम की मोहिनी छवि हृदय में बसाकर वो लाज छुपाने हेतु सखियों को देखने लगीं। श्री राम तथा सीता का युगल मनोहारी रूप देखकर उपस्थित जन समुदाय मन ही मन विधाता से प्रार्थना करने लगा कि वो महाराज जनक को प्रेरणा दें कि वो अपना प्राण त्याग कर सीता जी का विवाह श्री राम से कर दें। वृद्धावली गाते हुए भाटों ने महाराज जनक के प्राण को वाणी दी। इस भरी सभा में शिव के कठोर धनुष को जो भी तोड़ेगा सीता जी उसी का वरण करेंगी। प्रण सुनकर उपस्थित राजा एक क्षण को ललचाई दृष्टि से सीता जी का सुंदर रूप निहारते हैं, किंतु दूसरे क्षण उनकी दृष्टि मानो शिव जी के धनुष को तौलने लगती है। तमक कर वो धनुष को पकड़ते हैं, किंतु जब वो टस से मस नहीं होता तो लजाकर वापस चले जाते हैं।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने बताया कि बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ाने और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बनाने पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशेल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मेनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्री रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजैक ने कहा कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग घायल हुए हैं। मलबे में अभी भी 200 लोग फंसे हुए हैं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 16 ओवर और 5 गेंद में ही 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आइवरी कोस्ट ने क्राकाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट में जगह बनाई है। एक अन्य मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:10 से आप सुनेगा सुगम संगीत कार्यक्रम में। आज आप सुनेगा पंकज उधास की आवाज में गीत। 7:20 का समय होगा लोकगीत का। कार्यक्रम में आज आप सुनेगा भोजपुरी में गीत। कलाकार होंगे गणेश पंडित और साथी। बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि सुनेगा 7:35 से। कार्यक्रम में आज आप सुनेगा रविन्द्र संगीत। कलाकार होंगी कनिका बैनर्जी। दैनिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा का समय होगा 7:50 से। कार्यक्रम में आज आप सुनेगा डॉक्टर के चितलांगिया की भेंट वार्ता, नशा और स्वास्थ्य, इनसे बातचीत करेंगे राजेश कुमार। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले सुबह 8 से सुनेगा समाचार प्रभात। 8:15 का समय होगा मॉर्निंग न्यूज का। 8:30 से सुनेगा प्रादेशिक समाचार, जिसका प्रसारण होगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

8:45 का समय होगा कार्यक्रम गांधी चर्चा का। सुबह 9 बजे का समय होगा हिंदी में समाचार, जिसका प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 9:05 का समय होगा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरंजना का। शास्त्रीय संगीत ये कार्यक्रम सुनेगा 9:30 से। कार्यक्रम में आज आप सुनेगा पंडित कार्तिक कुमार का सितार वादन।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले सुबह 10 बजे से सुनेगा हिंदी में समाचार। 10:05 का समय होगा अंग्रेजी में समाचार का। 10:10 से सुनेगा विश्व दर्पण। फिल्म संगीत सुनेगा 10:20 से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले दिन में 11 बजे से सुनेगा हिंदी में समाचार। 11:05 का समय होगा कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर का। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले दिन में 12 बजे से सुनेगा हिंदी में समाचार। 12:05 का समय होगा फिल्म गीतों पर आधारित कार्यक्रम भावगीत का।

12:30 का समय होगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेगा पंडित जसराज और पंडित कुमार गंधर्व का ख्याल गायन, राग होगा भीम पलासी और गौड़ सारंग। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले दिन में 1 बजे से सुनने का हिंदी में समाचार, 1:05 का समय होगा अंग्रेजी में समाचार का, 1:10 से सुनेगा प्रादेशिक

2:30 का समय होगा फिल्म संगीत का। प्रादेशिक समाचार सुनेगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से, समय होगा 2:55। 3:00 सुनेगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 3:30 का समय होगा उपशास्त्रीय संगीत का। कार्यक्रम में आज आप सुनेगा पंडित भजन सपोरी का संतूर वादन। 3:45 का समय होगा झारखंड के लोकगीत। कार्यक्रम में आज आप सुनेगा उरांव भाषा में लोकगीत। कलाकार होंगे सोमराय तिर्की।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है सुगम संगीत कार्यक्रम। में आइए सुनते हैं पंकज उदास की आवाज में गीत।

पंकज उदास की आवाज में आप सुन रहे थे गीत। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीत। लोकगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए गणेश पंडित की आवाज में भोजपुरी में गीत।

गणेश पंडित और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे भोजपुरी में गीत। इसी के साथ लोकगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरंजलि। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं रविंद्र संगीत। कलाकार हैं करिंका बैनर्जी।

कनिका बैनर्जी की आवाज में आप सुन रहे थे रविंद्र संगीत। इसी के साथ बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर के चितलांगिया की भेंट वार्ता नशा और स्वास्थ्य। इनसे बातचीत कर रहे हैं राजेश कुमार।

0: श्रोताओं, आज नशा विरोधी दिवस है। हम सब जानते हैं कि नशा हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है और इसका दुष्प्रभाव बुरी तरह से हमारे शरीर पर पड़ता है। इसके बावजूद जाने अनजाने कई लोग ऐसे हैं जो नशा का सेवन करते हैं। स्वास्थ्य चर्चा के आज के अंक में हम बातें करेंगे नशा और स्वास्थ्य इस विषय पर। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर के चितलांगिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नशा कितने प्रकार का होता है और इसका क्या बुरा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है।
1: नशा कई प्रकार का होता है और नशा आज के डेट में बहुत कॉमन हो गया है, विशेष करके जो यंग जनरेशन है और जो बच्चे हैं, इवन उन लोगों में भी कॉमन हो गया है। बड़ों में तो खैर है ही। नशा सबसे कॉमन जो नशा हम लोगों के देश में है वो टोबैको प्रोडक्ट्स है जी। और उसके बाद में अल्कोहल प्रोडक्ट्स है। अच्छा। तो टोबैको हम लोग कई रूप में इस्तेमाल करते हैं, खैनी के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट है, बीड़ी है, ये सब रूप है। और अल्कोहल जो है वो वाइन से है, उसके बाद उसके कई रूप हैं, जैसे आप वाइन कह लीजिए, रम कह लीजिए, फिर बियर है, ब्रांडी है, जीन है, रम है, तो ये अल्कोहल है। इसके अलावा तीसरा नशा जो है वो ड्रग्स का है।
0: अच्छा।
1: जो आप सुनते होंगे कि इतना ड्रग्स इधर पकड़ाया उधर पकड़ाया, उसमें चरस है, अफीम है। अच्छा। गांजा है। हाँ। ये ड्रग्स है। चौथा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है,
0: उससे भी नशा होता है।
1: उससे भी नशा होता है, उसमें विशेष करके कोडीन जो है, कोडीन मार्केट में कई नाम से आता है, एम्फिटामीन है और पेंटाजोसिन है, मॉर्फिन के जो कई प्रोडक्ट हैं मेडिकल साइंस में जिसको एज ए पेन किलर यूज करते हैं, वो सब भी खूब इस्तेमाल होता है। उसका दूसरा पर्पस है, लेकिन इसको लोग नशे के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
0: तो इसका क्या परिणाम, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि क्या दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है?
1: सबसे बड़ा दुष्प्रभाव तो ये है कि आप किसी योग्य नहीं रह जाते हैं
0: जी,
1: आप एक फॉल्स वर्ल्ड में रहते हैं। अच्छा। रियलिटी से कट ऑफ हो जाते हैं,
0: दुनिया से अलग
1: हो जाती है, आपकी एक अपनी अलग आइसोलेटेड दुनिया बन जाती है और उसी दुनिया में आप घूमते रहते हैं और आपको वही दुनिया अच्छी लगती है और उसी में मजा भी आता है, आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है।
0: तो शारीरिक रूप से हम देखें तो किस अंग को ये नशा ज़्यादा प्रभावित करता है?
1: ये डिपेंड करता है आप कौन सा नशा करते हैं। और ऐसे तो ये जो नशा है ये शरीर में टॉप टू बॉटम एवरी सिस्टम एवरी ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है। विशेष करके जैसे अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो निश्चित रूप से लीवर सबसे पहले डैमेज होता है, फिर किडनी डैमेज होती है, ब्रेन को प्रभावित करता है, तो टोटली पूरे सिस्टम को डैमेज करता है। दूसरा, आप अगर टोबैको प्रोडक्ट लेते हैं तो निश्चित रूप से लंग कैंसर बहुत कॉमन है। अभी तो पैसिव स्मोकिंग पर भी रोक लग गया है।
0: हाँ।
1: आप पब्लिक प्लेस पर नहीं पी सकते हैं सिगरेट, और सिगरेट के डब्बे पर भी लिखा रहता है। हाँ। ताकि यंग जनरेशन उससे बचे।
0: आजकल ये देखा जाता है कि कुछ बच्चे, खासकर नीचे तबके के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, कुछ एडहेसिव ऐसे रहता है जिसको नशा के रूप में उपयोग करते हैं, ये कहाँ तक हानिकारक होता है?
1: ये भी हानिकारक है, ऐसा देखा गया है। कुछ बच्चों को मैं भी जानता हूँ और उनका ट्रीटमेंट भी कर रहा हूँ। वो बाजार में कुछ एडहेसिव आते हैं
0: जी,
1: उसको वो स्मेल करते हैं, उसमें उसको चार्म मिलता है।
0: अच्छा।
1: है ना। तो फिर उसमें कुछ ऐसा मटेरियल है
0: जी,
1: है वो बना है वो दूसरे पर्पस के लिए।
0: हाँ,
1: लेकिन उसको दूसरे पर्पस में लोग इस्तेमाल कर रहा है।
0: तो इसका बैड इफेक्ट तो सीधा शरीर पर पड़ता है,
1: शरीर पर इफेक्ट पड़ता है, बैड इफेक्ट।
0: तो इससे बचने के लिए आप हमारे श्रोताओं को क्या सलाह देंगे?
1: नशा के अगेंस्ट में आपका जागरूकता होना चाहिए
0: जी,
1: समाज में एक संदेश जाना चाहिए कि नहीं ये खराब चीज है और इसको अवॉइड करें, इससे छुटकारा पाएं। और दूसरा, इसकी अवेलेबिलिटी जो है उसको चेक करना चाहिए। ये जो आसानी से दवा दुकानों में जो मिल जाता है इसको तो आप चेक कर सकते हैं।
0: हाँ।
1: सिगरेट जो है, जो कि अभी देखिए हर जगह सिगरेट की दुकान है, छोटे बड़े कोई भी उसको बेचने से मतलब है, उसको आप रोक लगाइए। इसके लिए कानून भी है हमारे देश में, अच्छे कानून है, किंतु उनका इम्प्लीमेंशन अगर ढंग से हो तो बहुत हद तक इस पर कंट्रोल किया जा सकता है।
0: तो श्रोताओं, आपने सुना कि नशा किसी भी रूप में किया जाए वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कभी अच्छा नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि नशे के दुष्परिणाम काफ़ी हैं, इसलिए नशे से बचने की कोशिश कीजिए और जहां तक संभव हो सके अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए नशे से दूर रहिए। डॉक्टर साहब, आपने जो उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नशा और स्वास्थ्य, इसी विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर के चितलांगिया की भेंट वार्ता। इनसे बातचीत कर रहे थे राजेश कुमार। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार प्रभात, और फिर 8:15 से मॉर्निंग न्यूज। 8:30 से हम आपको आकाशवाणी के रांची केंद्र लिए चलेंगे, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राष्ट्रीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज जल मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रूपए शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
6: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रूपए होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रूपए होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रूपए होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रूपए और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रूपए है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रूपए का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रूपए का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
3: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृह मंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों के लिए नीट UG की पुनर्परीक्षा

0: की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
1: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काल रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
2: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना ₹1,000 महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई NRC की जरूरत, लोकसत्ता ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, NCERT की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि केदार में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड क्वीन मैक्सिमा ऑफ नेदरलैंड्स डिस्कस इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लेड रिवॉल्यूशन। गवर्नमेंट रिस्टोर्स कमर्शियल एलपीजी सप्लाईज टू प्री क्राइसिस लेवल्स, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named accused and several unidentified persons in connection with Ayodhya Ram Mandir donation case. IMF says India continues to be major driver of global economic growth despite economic impact of Iran conflict and higher energy prices. In football, Ecuador advanced to FIFA World Cup knockout stage, beating Germany 2-1 in New Jersey. And in cricket, Shefali Verma powers India to 5-wicket win over Bangladesh in Women's T20 World Cup in Manchester. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health, in New Delhi yesterday. Mr. Modi stated that during the meeting, they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. Prime Minister Modi will be on a state visit to Seychelles from the 27th to 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with 2 Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, the Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Hermeni, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Prime Minister will also address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora. Union Home Minister Amit Shah will chair the 10th apex-level meeting of the Narco Coordination Centre in New Delhi today. The meeting, being organised by the Narcotics Control Bureau, NCB, will bring together representatives of central ministries, state governments and drug law enforcement agencies to review and strengthen efforts to combat drug trafficking and drug abuse across the country. On the occasion, Mr. Shah will release the vision document on narcotics control 2026-29, which has been prepared through extensive consultations with various stakeholders. The Home Minister will also release the NCB Annual Report 2025 and inaugurate newly built NCB zonal offices in Jammu and Guwahati. In a major relief to industrial and commercial LPG consumers, government has removed all sectoral restrictions on the supply of non-domestic packed LPG and restored supplies to the levels prevailing prior to the West Asia crisis. More from our correspondent.
5: The Ministry of Petroleum and Natural Gas said in a statement that the supply of bulk LPG, which had been suspended at the onset of the crisis, has been relaxed by 50% of the pre-crisis consumption levels, providing significant relief to commercial and industrial consumers. The restoration follows the recent improvement in the LPG supply situation. The government has also decided to reduce the diversion of C3-C4 streams to LPG pool. During the West Asia crisis, the government had issued orders under the Essential Commodities Act requiring C3, C4 streams to be utilized exclusively for LPG production, diverting them from petrochemical and other downstream uses to augment domestic LPG production. The enhanced allocation of C3, C4 streams for non-LPG uses will be implemented while ensuring that the domestic LPG availability remains unaffected and aggregate indigenous LPG production is maintained at not less than 40 TMT per day. The government has directed oil marketing companies to continue maintaining comprehensive data on commercial and industrial LPG consumers to facilitate efficient planning and supply management. It has reiterated its commitment to expanding PNG connectivity. With Suparna, Nitika Gupta, Akashwani News, Delhi.
4: The government has hiked the fees for application of passports, with a 36-page fresh passport or reissue of passport now costing 2,500 rupees. The Passports Amendment Rules 2026 will come into force with effect from 1st of July. In a notification, the Ministry of External Affairs said that under the new fee structure, a fresh passport or reissue of passport under Tatkal will cost 5,000 rupees. The fee for 60-page ordinary passport or reissue will be 3,500 rupees, and under Tatkal, this will attract 6,000 rupees. In case of an ordinary passport in lieu of lost or damaged passport containing 36 pages, a sum of 5,000 rupees will be charged. For an ordinary passport in lieu of lost or damaged passport containing 60 pages, the cost will be 6,000 rupees. The National Testing Agency, or NTA, has opened a window for candidates to challenge the provisional answer keys for the NEET UG 2026 re-exam, which was held on the 21st of this month. The NTA announced that the answer keys are now available at www.neet.nta.in. Students can challenge questions for a fee of 200 rupees per question until the 28th of this month. This fee is fully refundable if the challenge is accepted. Further, the NTA has opened a portal for candidates who appeared for the re-exam to confirm and update their bank account details for fee refunds. The deadline to update the bank details is the 30th of this month. The Ashura-e-Muharram is being observed with due reverence and solemnity in different parts of the country today. The day marks the martyrdom of Prophet Muhammad's grandson, Hazrat Imam Hussein, and his companions who laid down their lives for upholding truth, righteousness and justice in Karbala. Taziyah processions will be taken out on the occasion. The majlis or religious meetings highlighting the supreme sacrifice of Karbala martyrs are also being organized. Elaborate security arrangements have been made on the occasion. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on X handle at EIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and download the News on EIR app. Uttar Pradesh government has taken strict action in the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra donation case, with the first FIR registered against 8 named accused and other unidentified persons. The FIR was filed following recommendations by the Special Investigation Team, SIT, constituted on the directions of the Chief Minister, Yogi Adityanath. The case was registered at the Sri Ram Janmabhoomi Police Station based on the written complaint of trust member Krishna Mohan. The FIR names Avinash Shukla, Anukalp Mishra, Lovekush Mishra, Manish Kumar Yadav, Karunesh Pandey, Ram Shankar Mishra, Subhash Srivastav and Sri Ram Shankar Yadav alias Tinu, along with other unidentified accused. Union Culture Minister Gajendra Singh Shekhawat participated in New Delhi in the closing ceremony of year-long programs commemorating 50 years of the emergency yesterday. The event marked the culmination of a series of activities organized to remember the period and reaffirm democratic values. On the occasion, the Union Minister visited the long-lived democracy and digital district repository exhibitions. Addressing the gathering, Mr. Shekhawat stated that the program was dedicated to honoring the unsung heroes of the freedom struggle, strengthening constitutional democracy and celebrating India's cultural legacy.
1: 51 वर्ष पूर्व 25 जून 1975 को
6: 55 years ago on 25th June 1975 India witnessed one of the darkest night in the history of its democracy. It was night when an attempt was made to suppress the spirit of the constitution and undermine its values. The freedom guaranteed by the constitution including

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा, 30 जून से शुरू होगा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान। 7 अक्टूबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची। राज्यव्यापी नशा मुक्ति जागरूकता अभियान का समापन। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, नशा मुक्त और स्वस्थ झारखंड सरकार का लक्ष्य। हाईकोर्ट ने रांची स्थित रिम्स की जमीन पर बाउंड्री वॉल निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने का राज्य सरकार को दिया निर्देश। आज मनाया जा रहा है मुहर्रम। रांची, जमशेदपुर, धनबाद समेत राज्य भर में ताजिया जुलूस, मजलिस और करबला में होगा धार्मिक आयोजन। और मौसम विभाग ने आज गढ़वा, पलामू और चतरा जिले के कुछ हिस्सों में लू की आशंका, शेष 20 जिलों में बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विशेष गहन पुनरीक्षण की कार्ययोजना और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर गणना और इन्यूमिरेशन फॉर्म का वितरण करेंगे। सभी दावों और आपत्तियों के निष्पादन के बाद 7 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
1: 30 जून से 29 जुलाई तक कार्यक्रम के संबंध में चर्चा हुई, साथ में उनका भी सहयोग आकर्षित की गई थी ताकि वो इनोवेशन फेज के समय में साथ साथ में काम करने के समय कंकरेंट ऑडिट के माध्यम से पार्टिसिपेटिव मोड में पूरा तरफ से आपका बीएलए 2 का सहयोग में अच्छा से एक मतदाता सूची त्रुटि रहित निर्माण करने का सहयोग आग्रह किया गया था, वो भी आश्वासन दिया था।
0: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 के दौरान फर्जी प्रमाण पत्रों के उपयोग को रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। उन्होंने पाकुड़ जिले में फर्जी वेबसाइट के माध्यम से जन्म, जाति एवं अन्य दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोह के खुलासे से संबंधित समाचार का संज्ञान लेते हुए ऐसे मामलों में त्वरित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। रांची के शौर्य सभागार में मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध चलाए गए 15 दिवसीय राज्यव्यापी जागरूकता अभियान का समापन हुआ। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार नशा मुक्त और स्वस्थ झारखंड के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता, खेलकूद, काउंसलिंग और सहभागिता को आवश्यक बताया तथा उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। एडमिशन और टेंडर घोटाले में सीआईडी की टीम द्वारा पूछताछ के बाद रिम्स निदेशक डॉ. राजकुमार ने इस्तीफा दे दिया है। राज्य सरकार ने इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और रिम्स के सर्जरी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. दीपेंद्र कुमार सिन्हा को अगले आदेश तक कार्यकारी निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। डॉ. राजकुमार ने अपने इस्तीफे में स्वास्थ्य संबंधी कारणों और काम करने के लिए पर्याप्त माहौल नहीं मिलने का उल्लेख किया है। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान की जमीन पर बाउंड्री वॉल निर्माण में आ रही बाधाओं को तत्काल दूर करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है। अदालत ने रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्माण कार्य के लिए पर्याप्त पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया है। वहीं बोकारो की लापता 18 वर्षीय युवती के मामले में हाईकोर्ट ने कोलकाता स्थित CFSL से प्राप्त DNA

0: रिपोर्ट का अवलोकन किया और राज्य सरकार को मामले की अद्यतन स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सहयोग से साइबर सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। उद्घाटन करते हुए न्यायुक्त अनिल कुमार मिश्रा ने लोगों से साइबर ठगी से बचने के लिए सतर्क रहने की अपील की। वहीं सीआईडी की डीएसपी नेहा बाला सिंह ने डिजिटल अरेस्ट, फर्जी वेबसाइट और ऑनलाइन ठगी से बचाव के उपायों की जानकारी दी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आज देश भर में मनाया जा रहा है मुहर्रम। इस मौके पर मजलिस, ताजिया जुलूस और दुआओं का आयोजन किया जाएगा। प्रशासन की ओर से जुलूस मार्गों पर सुरक्षा, यातायात और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। इससे पूर्व कल मुहर्रम के दौरान शांति और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए रांची पुलिस ने मेन रोड पर फ्लैग मार्च और व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। रांची में भारतीय जनता पार्टी महानगर जिला की ओर से संविधान हत्या दिवस के अवसर पर संगोष्ठी और लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि आपातकाल लोकतंत्र का काला अध्याय था और नई पीढ़ी को इससे परिचित कराना आवश्यक है। कार्यक्रम में मीसा कानून के तहत जेल गए लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया गया।
1: देशवासी संविधान के हत्या दिवस के रूप में इसलिए मानते हैं क्योंकि देश में आपातकाल के नाम से जो जुल्म ढाया गया था, संविधान को तार तार किया गया था और देशवासी ने आत्मसात किया था, उसकी हत्या होते हुए लोगों ने देखा।
0: धनबाद पुलिस ने फरार गैंगस्टर प्रिंस खान के गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह लंबे समय से प्रिंस खान गिरोह के संपर्क में था और गिरोह के निर्देश पर काम कर रहा था। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि रंगदारी के विवाद में एक रेलवे ठेकेदार पर फायरिंग की साजिश रची जा रही थी।
2: टीम के द्वारा सूचना के अनुसार प्रॉपर तरीके से रेड किया गया है। उस रेड में हमको दो पिस्टल और 33 लाइव राउंड्स गोली बरामद हुआ है, तो साथ में इनका जो यूज हुआ मोबाइल भी मिला है। ये चार आइटम सीज करते हुए इनको विधिवत वहां पर अरेस्ट किए गए हैं।
0: मौसम विभाग ने आज गढ़वा, पलामू और चतरा जिले के कुछ हिस्सों में लू चलने की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में अलनीनो के प्रभाव के कारण अगले कुछ दिनों में बारिश कम देखने को मिलेगी।
3: आने वाले दिनों में एक दो दिनों में हीट वेव जैसी भी स्थिति रहेगी, क्योंकि थोड़ा सा गर्मी है, थोड़ा सा उमस है, फील लाइक टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा फील होगा। यही है कि 26 सेकंड हाफ से थोड़ा सा स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिलेगा और उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि लास्ट जो जून का दो तीन दिन बचता है 28-29 तारीख से और पहला हफ्ता जुलाई में, वहाँ उम्मीद की जा रही है कि मानसून थोड़ा सा रिवाइव कुछ करेगा।
0: झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रशिक्षक बबलू कुमार को भारतीय कुश्ती संघ ने भारतीय अंडर 15 ग्रीको रोमन कुश्ती टीम का प्रशिक्षक नियुक्त किया है। उनके नेतृत्व में भारतीय टीम 27 से 29 जून तक थाईलैंड में आयोजित होने वाली अंडर 15 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी। बबलू कुमार की नियुक्ति से झारखंड के खेल जगत में उत्साह का माहौल है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य के लगभग सभी अखबारों ने वेनेजुएला में आए भूकंप से तबाही के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पारण परेड में शामिल होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पुलिसकर्मी के लिए बनेंगे अस्पताल व आवासीय विद्यालय। प्रभात खबर ने लिखा है, छापे के बाद रिम्स निदेशक का इस्तीफा, कहा अपराधी की तरह की गई पूछताछ। दैनिक भास्कर ने लिखा है, झारखंड में ठनके से 10 की मौत, दैनिक जागरण की सुर्खी है।

दूर करने का राज्य सरकार को दिया निर्देश। आज मनाया जा रहा है मुहर्रम। रांची, जमशेदपुर, धनबाद समेत राज्य भर में ताजिया जुलूस, मजलिस और करबला में होगा धार्मिक आयोजन। और मौसम विभाग ने आज गढ़वा, पलामू और चतरा जिले के कुछ हिस्सों में जताई लू की आशंका। शेष 20 जिलों में बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है गांधी चर्चा कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं वार्ता महात्मा गांधी के विचारों में नैतिक मूल्य। वाचन स्वर है शिखा खौरी का।

श्रोताओ, महात्मा गांधी के विचार सत्य, अहिंसा, समानता और नैतिक उत्थान पर आधारित थे, जिनका मुख्य उद्देश्य एक शोषण मुक्त और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना था। उनका मानना था कि समाज में कोई भी स्थायी बदलाव कानून से नहीं बल्कि व्यक्ति के आंतरिक नैतिक सुधार से आ सकता है। गांधी जी के अनुसार समाज का आधार सत्य और सक्रिय प्रेम होना चाहिए, जिससे आपसी विवादों का शांतिपूर्ण समाधान हो सके। उनके अनुसार भारत की आत्मा गांव में बसती है। वे चाहते थे कि हर गांव अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए पूरी तरह आत्मनिर्भर बने। समाज में अमीर गरीब का भेद मिटाने के लिए उन्होंने हर व्यक्ति के लिए शारीरिक श्रम को आवश्यक माना। व्यक्ति को अपनी जरूरत से ज्यादा धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, ताकि समाज में संसाधनों का समान वितरण हो सके। समाज में शांति के लिए वे सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान और सहिष्णुता की भावना को जरूरी मानते थे। महात्मा गांधी केवल एक राजनीतिक नेता ही नहीं थे, बल्कि एक महान नैतिक चिंतक भी थे। उनके जीवन और विचारों का मूल आधार नैतिकता था। नैतिक मूल्य वे मानवीय गुण और मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, जो व्यक्ति को सही और गलत, अच्छे और बुरे के बीच अंतर करना सिखाते हैं। ये मूल्य समाज में सही व्यवहार, शांति और आपसी तालमेल बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी हैं। ये मूल्य व्यक्ति के आंतरिक व्यक्तित्व और चरित्र को मजबूत और विश्वसनीय बनाते हैं। जब समाज के लोग नैतिक होते हैं, तो अपराध, भ्रष्टाचार और आपसी टकराव जैसी समस्याएं कम होती हैं। कठिन और दुविधापूर्ण परिस्थितियों में नैतिक मूल्य व्यक्ति को सही रास्ता चुनने की शक्ति देते हैं। आज के समय में लोग नैतिक मूल्यों से ज्यादा भौतिक सुख और धन दौलत को महत्व देने लगे हैं। गांधी जी का विश्वास था कि मनुष्य का वास्तविक विकास केवल भौतिक प्रगति से नहीं बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति से होता है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक कार्यों और राजनीतिक आंदोलनों में नैतिक मूल्यों को सर्वोच्च स्थान दिया। गांधी जी के नैतिक दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण आधार सत्य था। उनका प्रसिद्ध कथन था, सत्य ही ईश्वर है। सत्य केवल सच बोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि विचार, वाणी और कर्म की एक रूपता है। व्यक्ति को हर परिस्थिति में सत्य का पालन करना चाहिए। सत्य की खोज जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। गांधी जी ने सत्य के लिए संघर्ष को सत्याग्रह का नाम दिया। अहिंसा गांधी जी के नैतिक दर्शन का दूसरा प्रमुख स्तंभ था। वे मानते थे कि हिंसा से केवल घृणा और विनाश पैदा होता है, जबकि अहिंसा प्रेम, करुणा और भाईचारे को बढ़ावा देती है। किसी को शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक कष्ट न पहुंचाना ही अहिंसा है। विरोधी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए। अहिंसा कायरता नहीं बल्कि साहस और आत्मबल का प्रतीक है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अहिंसा को एक शक्तिशाली हथियार के रूप में प्रयोग किया और दुनिया को दिखाया कि बिना हिंसा के भी बड़े परिवर्तन लाए जा सकते हैं। गांधी जी का विश्वास था कि नैतिक जीवन के लिए आत्म संयम आवश्यक है। मनुष्य को अपनी इच्छाओं, क्रोध, लालच और मोह पर नियंत्रण रखना चाहिए। उनके अनुसार आत्म संयम से

व्यक्ति का चरित्र मजबूत बनता है। सादा जीवन और उच्च विचार नैतिक जीवन की पहचान है। भौतिक सुखों की अंधी दौड़ मनुष्य को नैतिक पतन की ओर ले जाती है। गांधी जी स्वयं अत्यंत सरल जीवन जीते थे और अपने आचरण से दूसरों को प्रेरित करते थे। गांधी जी मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। उनका विश्वास था कि गरीब, पीड़ित और वंचित लोगों की सेवा करना ईश्वर की सेवा के समान है। वे कहते थे, व्यक्ति को केवल अपने हित के बारे में नहीं बल्कि समाज के कल्याण के बारे में भी सोचना चाहिए। दूसरों के दुख को अपना दुख समझना चाहिए। समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करना नैतिक कर्तव्य है। गांधी जी सभी मनुष्यों को समान मानते थे। वे जाति, धर्म, रंग, लिंग और वर्ग के आधार पर होने वाले भेदभाव के विरोधी थे। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सम्मान और गरिमा का अधिकारी है। समाज में ऊंच नीच की भावना समाप्त होनी चाहिए। सभी धर्मों का समान आदर करना चाहिए। उनका मानना था कि नैतिक समाज वही है जहां हर व्यक्ति को सम्मान और अवसर प्राप्त हो। गांधी जी अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों पर अधिक बल देते थे। उनका विचार था कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे तो अधिकार स्वतः सुरक्षित हो जाएंगे। वे मानते थे अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी निभाना प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। स्वार्थ से ऊपर उठकर सामूहिक हित को महत्व देना चाहिए। गांधी जी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नैतिक सिद्धांत था कि अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अच्छे साधनों का ही प्रयोग होना चाहिए। उनका विश्वास था, गलत तरीकों से प्राप्त सफलता वास्तविक सफलता नहीं है। साधन और साध्य दोनों शुद्ध होने चाहिए। नैतिकता का पालन हर परिस्थिति में आवश्यक है। यही कारण है कि उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भी हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया। गांधी जी सभी धर्मों का सम्मान करते थे। वे मानते थे कि सभी धर्म सत्य और नैतिकता की शिक्षा देते हैं। उनके अनुसार धर्म का उद्देश्य मनुष्य को नैतिक बनाना है। धार्मिक कट्टरता समाज में संघर्ष पैदा करती है। विभिन्न धर्मों के लोगों को प्रेम और सद्भाव से रहना चाहिए। गांधी जी के नैतिक विचार सत्य, अहिंसा, आत्मसंयम, सेवा, समानता, कर्तव्य और धार्मिक सहिष्णुता जैसे उच्च आदर्शों पर आधारित हैं। उनका मानना था कि व्यक्ति का वास्तविक विकास नैतिक मूल्यों के पालन से होता है। आज भी उनके विचार व्यक्तिगत जीवन, समाज और राष्ट्र के निर्माण में मार्गदर्शक सिद्ध होते हैं। गांधी जी का नैतिक दर्शन केवल सिद्धांत नहीं बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का व्यवहारिक मार्ग है। और अब आइए सुनते हैं बापू के प्रिय भजन का कुछ अंश।

इसके साथ ही कार्यक्रम गांधी चर्चा का आज का अंक यहीं संपन्न होता है। इस अंक के प्रस्तुतकर्ता थे राजेश कुमार राय। अब मुझे यानी शिखा कोरी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

महात्मा गांधी के विचारों में नैतिक मूल्य, इसी विषय पर आप सुन रहे थे वार्ता। वाचन स्वर था शिखा खौरी का। इसी के साथ कार्यक्रम गांधी चर्चा अब संपन्न होता है।

0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
1: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को कड़ी सिफारिशों के साथ सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्य मंत्री, जनप्रतिनिधि और किसान भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद श्री सिंह और मुख्यमंत्री पंतनगर में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
2: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यूजर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए अगले राउंड में जगह बनाई। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने क्रोएशिया को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट में जगह बनाई। उधर डलास स्टेडियम में जापान और स्वीडन का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही जापान और स्वीडन नॉकआउट राउंड में जगह बनाने में सफल रहे हैं। अगले राउंड में जापान का सामना 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। इसी बीच कैंसस सिटी में नेदरलैंड्स ने ट्यूनिशिया को 3-0 हराकर ग्रुप एफ में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया है। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:05 और 19 सेकंड हुए हैं। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरंजना लेकर हम हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में।

0: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कटे फटे या पुराने नोट को
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: जलवायु परिवर्तन हमें कैसे प्रभावित करता है। यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन मानव जीवन के लिए एक खतरा है, क्योंकि यह ताजा पानी कम करता है, भोजन की सप्लाई में रुकावट डालता है और वायु की क्वालिटी को खराब करता है। इसका असर खासकर गरीब लोगों पर पड़ता है। यह जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को भी नुकसान पहुंचाता है और लोगों के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल देता है। गर्मी की लहर, बाढ़ और सूखा जैसे मौसम अब बार बार हो रहे हैं, जिससे लोगों को नुकसान होता है और उन्हें अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। जलवायु परिवर्तन तटवर्ती और बाढ़ प्रभावित इलाकों से पलायन का बढ़ावा दे सकता है। कुछ क्षेत्रों को थोड़े समय के लिए लाभ हो सकता है, लेकिन अधिकतर को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह एक चौंकाने वाली बात है। करीब 10 लाख पौधे और जानवरों की प्रजातियां विलुप्त होने के किनारे पर हैं, और कई तो अगले कुछ दशकों में ही गायब हो सकती हैं।
1: नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
2: ज्ञान विज्ञान
3: इतिहास के पन्नों से,
2: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
1: मौसम का मिजाज,
2: अपने शहर की खबरें,
3: बातों मुलाकातों के साथ
1: सुरीला मनोरंजन
2: और भी बहुत कुछ।
1: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में
3: दिन के 11:05 से 12 तक
2: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
4: नमस्कार जमशेदपुर।
5: हेलो मनभावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 से 12:30 के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरजना। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। स्वीकार कीजिए श्वेता का नमस्कार। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पार्श्व गायिका नीति मोहन के गाए कुछ प्यारे से गाने।

0: सनम तेरी कसम, इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। गाने के बोल लिखे समीर ने और धुन बनाई हिमेश रेशमिया ने और आवाज़ थी नीति मोहन की। श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे कार्यक्रम सुरंजना। कार्यक्रम में समय हो चला है अंतराल का, बने रहिए आकाशवाणी जमशेदपुर के साथ।
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
2: हेलो डॉक्टर,
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
2: हेलो डॉक्टर,
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

जब तक है जान, इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। इस गाने को नीति मोहन के साथ गाया सोफिया अशरफ ने और रचना थी गुलजार की, धुन बनाई ए आर रहमान ने। श्रोताओं, नीति मोहन ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर के गाने इश्क वाला लव से गायकी की दुनिया में कदम रखा और अपनी मधुर आवाज से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस पहले गाने से ही नीति मोहन ने लोगों के दिल में जगह बना ली। स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद नीति मोहन ने जब तक है जान का गाना जियारे गाया, जिसे अभी हमने आपको सुनवाया। इस गाने से वो खूब मशहूर हुई। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

कलंक फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। आवाजें थी अरिजीत सिंह और नीति मोहन की। गाने के बोल लिखे अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीतबद्ध किया प्रीतम ने।

इसी गाने के साथ कार्यक्रम सुरंजना अब संपन्न होता है। कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे पार्श्व गायिका नीति मोहन के गाए गाने। अब कार्यक्रम से श्वेता को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं पंडित कार्तिक कुमार का सितार वादन। राग है अहिर भैरव।

आप सुन रहे थे पंडित कार्तिक कुमार का सितार वादन, राग था अहिर भैरव। अब आइए सुनते हैं इन्हीं का सितार पर बजाया मिश्र भैरवी में धुन।

आप सुन रहे थे पंडित कार्तिक कुमार का सितार पर बजाया धुन मिश्र भैरवी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10 बजने वाले कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की।

0: बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्बनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज जल मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू LPG की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
2: LPG की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक LPG की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली LPG आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने PNG कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्णमोहन ने दर्ज कराई थी। SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। कर्बला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए मजलिसें और धार्मिक सभाएं भी आयोजित की जा रही हैं। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनका त्याग साहस, दृढ़ विश्वास और मानवीय मूल्यों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। आज भारत का अगला मुकाबला रविवार को ऑस्ट्रेलिया से होगा। वहीं T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत की पुरुष टीम आज बेलफास में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला मैच खेलेगी। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेट क्वीन मैक्सिमा ऑफ द नेदरलैंड्स एंड डिस्कस्ड हाउ इंडियाज Digital Public Infrastructure-led Revolution is making financial services more accessible and affordable while enhancing ease of living and empowering people at scale. In a social media post, Mr. Modi said he is delighted to meet Queen Maxima of the Netherlands, who is also the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health and a long-standing global voice for financial inclusion. PM Modi said that India remains committed to sharing its experience with partner countries worldwide. Queen Maxima is visiting India in her capacity as the United Nations Secretary General's Special Advocate for Financial Health. Ministry of External Affairs said that her visit reflects the shared commitment to advancing financial inclusion and draws on India's transformative experience in leveraging digital public infrastructure for inclusive growth and sustainable development. Prime Minister Modi will be on a state visit to Seychelles from 27th to 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces, along with two Indian Navy ships, will participate in the celebrations. During the visit, Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Prime Minister will also address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora. In a major relief to industrial and commercial LPG consumers, government has removed all sectoral restrictions on the supply of non-domestic packed LPG and restored supplies to the levels prevailing prior to the West Asia crisis. Ministry of Petroleum and Natural Gas said in a statement that the supply of bulk LPG, which had been suspended at the onset of the crisis, has been relaxed by 50% of the pre-crisis consumption levels, providing significant relief to commercial and industrial consumers. UP Police has arrested 8 people named in the first FIR filed in Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra donation case. The FIR was filed following recommendations made by the special investigation team constituted on the directions of Chief Minister Yogi Adityanath. The case was registered at the Sri Ram Janmabhoomi Police Station on the written complaint of Trust member Krishna Mohan. The FIR names Avinash Shukla, Anukalp Mishra, Lovkush Mishra, Manish Kumar Yadav, Kurnesh Pandey, Ram Shankar Mishra, Subhash Srivastav and Sri Ram Shankar Yadav alias Tinu, along with other unidentified accused. The International Monetary Fund Director of Communication Department, Julie Kozak, has said that India continues to be a major driver of global economic growth despite the economic impact of the Iran conflict and higher energy prices.
4: India's economy has been growing robustly, and it has been supported particularly by very strong domestic demand within India. We had projected growth at 6.5% in fiscal year 26-27, and that was a slight upgrade. That was in April, and that was a slight upgrade compared to what we had had in January. So 6.5% is still quite strong growth. We see that there's strong momentum that has continued in the first quarter of this calendar year. The economy in India had been growing in the first quarter at 7.8%.
3: In Venezuela, death toll in two powerful earthquakes has risen to 235. More than 1,500 people have been injured. Rescuers are searching through rubble in a rush to save lives after earthquake struck near the capital yesterday. In the FIFA World Cup, Ecuador advanced to the knockout stage, beating Germany 2-1 in a Group E clash at the New Jersey Stadium early this morning. Gonzalo Plata turned saviour as a resilient Ecuador pulled off a stunning 2-1 come-from-behind victory. Earlier, Ivory Coast also secured their place in the knockout stage for the first time with a comfortable 2-0 victory. And that is the end of this news bulletin.
5: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जागृति शर्मा मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने

0: भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए कल 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, भारत ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। भारत चीन सीमा व्यापार उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से होकर 6 साल बाद फिर से बहाल। वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या बढ़कर 235 हुई और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति, अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं।
1: नीदरलैंड्स की महारानी के साथ मुलाकात के बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय स्वास्थ्य से संबंधी उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। उन्होंने भारत के जनधन कार्यक्रम के लाभार्थियों से भी बातचीत की, जो एक सरकारी पहल है और जिसके तहत परिवारों को किफायती दरों पर बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जाती है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत और सेशल्स के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जन संबंधों पर आधारित दूरगामी साझेदारी है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर कायल से बातचीत की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी प्रभावी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
2: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और हुर्मुज जल मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू हो रहा है। आज 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस दल में 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। धारचूला के उप

0: अधिकारी और व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि व्यापार को सुगम बनाने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय खोला गया है। व्यापारियों ने अपना सामान पहले ही लिपुलेख दर्रे के निकट स्थित गोदामों में पहुंचा दिया। प्रशासन को 103 से अधिक व्यापारियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं और जल्द ही 25 व्यापारियों के दूसरे दल को भी व्यापार पास जारी किए जाएंगे। सामान ढुलाई के लिए नाभी ढांग के पास खच्चरों और घोड़ों की व्यवस्था की गई है। भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 1991 में पुनः शुरू हुआ था, लेकिन कोविड महामारी के कारण 2020 में इसे स्थगित कर दिया गया था। 6 वर्ष बाद व्यापार बहाल होने से सीमावर्ती क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है। वेनेजुएला में कल आए भूकंप के 2 शक्तिशाली झटकों से मृतकों की संख्या अब 235 हो गई है। 1500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बचाव कर्मी मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: भूकंप के बाद वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई है। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव के लिए कई देश आगे आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से एकजुटता और सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में ये भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंध को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए अमीशा।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों को निकालने के प्रयास रोक दिए हैं। ओमान तट पर कल एक जहाज पर हुए हमले के बाद ये निर्णय लिया गया। इसके पहले ईरान की अनुमति के बिना जहाजों को नए मार्ग का उपयोग न करने की चेतावनी दी गई थी। अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: सबसे पहले बात फुटबॉल विश्व कप की। फीफा विश्व कप में अमेरिका के न्यूजर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए अगले दौर में जगह बना ली है। गोंजालो प्लाटा के शानदार खेल की बदौलत इक्वाडोर ने वापसी करते हुए ये मैच जीत लिया। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट में जगह बनाई। इस जीत के साथ आइवरी कोस्ट के 6 अंक हो गए हैं। एक अन्य मैच में जापान और स्वीडन का मैच ड्रॉ रहा, दोनों ने 1-1 गोल किया। इसके साथ ही जापान और स्वीडन नॉकआउट राउंड में जगह बनाने में सफल रहे। उधर नीदरलैंड ने ट्यूनिशिया को हराकर ग्रुप एफ में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराया और पहली बार नॉकआउट में जगह बनाई। अब बात निशानेबाजी की। जर्मनी में ISSF जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 4 और पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही भारत प्रतियोगिता में कुल 25 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर है। बात महिला T20 विश्व कप की। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। कल इंग्लैंड के मैनचेस्टर में बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। और उधर T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत की पुरुष टीम आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के खिलाफ पहला मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। दूसरा और अंतिम मैच रविवार को खेला जाएगा।
0: आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा भारत ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। भारत चीन सीमा व्यापार उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से होकर 6 साल बाद फिर से बहाल। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: हेलो डॉक्टर,
3: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
2: हेलो डॉक्टर,
3: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
2: हेलो डॉक्टर,

प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, आज मुहर्रम का पवित्र दिन है। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर हिजरी का पहला महीना होता है। इस दिन खास इबादत की जाती है और रोजे रखे जाते हैं। मुहर्रम शोक मनाने का दिन है। इस दिन लोग ताजिया निकालते हैं। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन इब्न अली की शहादत से जुड़ा है। ये दिन सब्र, कुर्बानी, वफा और हक की राह पर कायम रखने की मिसाल माना जाता है।

ये सूफी गीत आप सुन रहे थे यंगिस्तान फिल्म से। आवाज़ें थीं शिराज उप्पल और शफाकत अली ख़ान की। गाने के बोल लिखे शकील सुहेल ने और धुन बनाई शिराज उप्पल ने।

गुंडे फिल्म का ये सुफियाना गीत आप सुन रहे थे शादाब फरीदी और अल्तमश फरीदी की आवाजों में। रचना थी इरशाद कामिल की और धुन बनाई सुहेल सेन ने। श्रोताओ, इस समय आप सुन रहे फिल्म संगीत। आज बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर अपना जन्मदिन मना रहे हैं। इन्हें जन्मदिन की ढेरों बधाई। 2012 में अर्जुन कपूर ने इशकजादे फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का गाना।

इशकजादे फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। आवाजें थी शालमली खोलगड़े और साथियों की। गाने के बोल लिखे कौसर मुनीर ने और धुन बनाई अमित त्रिवेदी ने।

श्रेया घोषाल और अरमान मलिक की आवाजों में आप सुन रहे थे की एंड का, फिल्म का गाना। गाने के बोल के अमिताभ भट्टाचार्य ने और इस गाने को संगीत सजाया इलैया राजा ने।

छिछोरी फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे, आवाज़ थी अरिजीत सिंह की। गाने के बोल लिखे अमिताभ भट्टाचार्य ने और इस गाने को संगीतबद्ध किया प्रीतम ने। और इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: श्रोताओं, इस समय आप हैं आकाशवाणी जमशेदपुर के साथ।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
3: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
4: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे तो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
3: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
4: आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
0: हमारा अगला कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर आप सुनेंगे इसी चैनल पर।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रिले समाचार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि

0: के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों के एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर कायल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी द्वारा आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थाओं और संगठनों की सराहना की। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
1: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
2: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिया निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत की पुरुष टीम आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला मैच खेलेगी। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। दिन के 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

जावेद अली और कैलाश खेर की आवाज़ों में अभी आपने सुना डल्हे सेक्स फिल्म का ये गीत। प्रसून जोशी ने इस गीत को लिखा था, एआर रहमान ने संगीतबद्ध किया था। और अब कार्यक्रम में वक्त है उस मुकद्दस याद को ताज़ा करने का, जिसका नाम आते ही आंखें नम हो जाती हैं, दिल अदब से झुक जाता है। और जहन में करबला का मंजर ताजा हो जाता है। मुहर्रम यानी गम का महीना, सब्र का महीना और इमाम हुसैन की शहादत को याद करने का महीना, जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक रोशन मिसाल है। मित्रों, मुहर्रम का महीना हमें हज़रत इमाम हुसैन और उनके घराने साथियों की शहादत की याद दिलाता है। मुहर्रम का ये पाकीज़ा महीना सब्र की ताकत को भी बयां करने का सबक देता है। और मुहर्रम का एक ख़ास पहलू ये भी है कि ये महीना हमें नफ़रत नहीं मोहब्बत सिखाता है। आज जब दुनिया में छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जब रिश्तों में तलखी बढ़ रही है, तब करबला का पैगाम और भी अहम हो जाता है। करबला हमें सिखाती है कि इंसान का कद उसके कपड़ों, ओहदों या ताकत से नहीं बल्कि उसके व्यवहार, सब्र, सच्चाई और दूसरे के लिए खड़े रहने से ऊंचा होता है। इस महीने की एक ख़ास बात और भी है दोस्तों, ये महीना हमें आपसी भाईचारे के साथ साथ पानी की कदर करना भी सिखाता है।

सलीम मर्चेंट की आवाज़ में भी आपने सुना कुर्बान फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा था प्रसून जोशी ने और तर्ज बनाई थी सलीम सुलेमान ने।

मित्रों, आज का ये दिन यानी 26 जून दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय यातना पीड़ितों के समर्थन का दिवस यानी इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर के रूप में मनाया जाता है। ये दिन उन लोगों के नाम है जिन्होंने किसी न किसी रूप में यातना, अत्याचार, अमानवीय व्यवहार, मानसिक या शारीरिक पीड़ा का सामना किया है। ये दिन उन टूटे हुए दिलों की आवाज़ है दोस्तों, जिनकी चीखें अक्सर दीवारों में कैद रह जाती हैं। ये दिन उन आँखों के आंसू पोंछने का दिन है जो दुनिया के सामने मुस्कुराने की कोशिश तो करते हैं लेकिन अंदर से बिखर चुकी होती है। आज मैं किसी के दर्द को कुरेदने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बल्कि दर्द को समझने और मानव अधिकारों की अहमियत को महसूस करा रही हूँ। क्योंकि ये तो सच है ना कि दुनिया तभी बेहतर बनती है जब हम सिर्फ अपनी नहीं दूसरों की पीड़ा को महसूस करना सीख जाते हैं। कई बार यातना का शिकार शरीर या कई बार दोस्तों यातना के जो निशान होते हैं ना वो शरीर पर नहीं दिखते लेकिन मन पर ऐसी दरारें छोड़ जाते हैं जो बरसों तक नहीं भरती। किसी पीड़ित की रातों की नींद छिन जाती है, उसे भरोसा करना मुश्किल हो जाता है, लोगों से डर लगने लगता है और कई बार वो खुद को दोषी मानने लगता है जबकि दोष उसका नहीं बल्कि अत्याचार का होता है। दोस्तों, यातना का दर्द केवल उसे घटना तक सीमित नहीं रहता, उसके बाद की जिंदगी भी उससे प्रभावित होती है। पीड़ित के मन में बार बार वही दृश्य लौट सकते हैं, उसे घबराहट, डर, अवसाद, गुस्सा, अकेलापन, भरोसे की कमी और जीवन के प्रति निराशा महसूस हो सकती है। कई लोग समाज के डर से बोल नहीं पाते, उन्हें लगता है कि लोग सवाल करेंगे, दोष देंगे या उनकी पीड़ा को छोटा करके देखेंगे। कुछ लोग न्याय की राह में इतने संघर्ष देखते हैं कि चुप ही हो जाते हैं। हमें समझना होगा कि पीड़ित को भूल जाओ कहना समाधान नहीं है। समाधान है उसे सुनना, उस पर विश्वास करना, उसे सुरक्षित महसूस कराना और उसके इलाज, कानूनी सहायता के सहारे उसे खड़ा करना। हमें यह सीखना होगा कि पीड़ितों के बारे में बात करते समय आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए। हमें ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जिससे उनके घाव जो है गहरे हो। ऐसे सवाल भी ना करें जो उन्हें शर्मिंदा करें। ऐसे व्यवहार भी ना करें जिससे उन्हें लगे कि वे अकेले हैं। जब कोई इंसान यातना या प्रताड़ना से गुजरता है ना दोस्तों, तो उसके लिए सबसे पहला और सबसे सुरक्षित सहारा अक्सर उसका परिवार हो सकता है। लेकिन ये तभी संभव है जब परिवार सुनना जानता हो, समझना जानता हो और बिना जज किए साथ देना जानता हो। परिवार को चाहिए कि वो पीड़ित से ये ना कहे लोग क्या कहेंगे, अब पुरानी बात छोड़ो, तुमने ही कुछ किया होगा, चुप रहो, बदनामी होगी। इसके बजाय परिवार कहे तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा दर्द सच है, तुम्हारी गरिमा हमारे लिए सबसे जरूरी है, हम न्याय और उपचार दोनों के लिए तुम्हारे

साथ चलेंगे। यही शब्द किसी टूटे हुए इंसान के लिए दवा बन जाती है। श्रोताओं, जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी इंसान की आवाज छीन ली जाए, उसके मन में डर भर दिया जाए, उसके आत्मसम्मान को कुचल दिया जाए और फिर उसे कहा जाए कि अब सब सामान्य हो जाओ, क्या यह संभव है? शायद नहीं। इसीलिए आज का दिन हमें यह सिखाता है कि दर्द का मजाक नहीं बनाया जाता, दर्द को सुना जाता है। आंसू की वजह नहीं पूछी जाती, पहले आंसू पूछे जाते हैं। और किसी टूटे हुए इंसान से ये नहीं कहा जाता कि तुम मजबूत बनो, बल्कि ये कहा जाता है तुम्हें अकेले मजबूत बनने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। कितनी खूबसूरत बात है ना। कभी कभी इंसान को पूरी दुनिया नहीं चाहिए होती है, सिर्फ एक यकीन चाहिए होता है कि उसका दर्द किसी ने सच में समझा है और उसे सहारा दिया है।

0: AR रहमान के संगीत निर्देशन में भी आप सुन रहे थे इरशाद कामिल का लिखा तमाशा फिल्म का ये गीत। अरिजीत सिंह और अलका याग्निक की आवाजें थी।
1: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।
2: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
3: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
2: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
3: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर, और इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपकी हमसफर इशरत।

मित्रों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है, क्योंकि आज 26 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस मनाया जाता है। आज का ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि नशा केवल एक बुरी आदत नहीं, बल्कि व्यक्ति, परिवार और पूरे समाज को खोखला कर देने वाली एक गंभीर समस्या है। मित्रों, नशा किसी भी रूप में हो, तंबाकू, सिगरेट या किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ, ये धीरे धीरे इंसान के शरीर, मन, सोच, परिवार, रिश्ते और भविष्य सबको अपनी गिरफ्त में ले लेता है। शुरुआत इसकी अक्सर मजाक, शौक या दोस्तों के दबाव या तनाव से होती है, लेकिन यही आदत धीरे धीरे लत बन जाती है।

जाती है और फिर ये लत इंसान से उसकी सेहत, सम्मान, कमाई, चैन और मुस्कान सब छीन लेती है। मित्रों, नशा एक दीमक की तरह है जो हमारे समाज को, विशेषकर युवाओं को, अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही है। यह सिर्फ एक व्यक्ति के स्वास्थ्य को खराब नहीं करता, पूरे परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से बर्बाद भी कर देता है। यही नहीं, युवा पीढ़ी जो किसी भी देश का भविष्य होते हैं, नशे की गिरफ्त में आते ही तो देश का विकास भी रुक जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस मनाने का उद्देश्य केवल जागरूकता फैलाना नहीं है दोस्तों, बल्कि लोगों को यह समझाना भी है कि नशे से दूर रहना ही सच्ची आजादी है। एक नशा मुक्त व्यक्ति ही अपने सपनों को पूरा कर सकता है, अपने परिवार को खुश रख सकता है और समाज के लिए प्रेरणा बन सकता है। तो आइए आज के दिन ये चिंतन करें कि किस तरह से नशे से युवाओं को दूर रखा जाए। इसके लिए ये जरूरी है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति नशे की लत से जूझ रहा है तो उसको समझाएं, सही जो है सलाह दें, दोस्तों और परिवार को भी इसके नुकसान बताएं। युवाओं को ये भी बताएं कि तनाव, दुख, असफलता या अकेलापन, इन सब का इलाज नशा नहीं है, बल्कि आपसी बातचीत या सलाह से भी मसले हल हो सकते हैं। अच्छा माहौल, सकारात्मक सोच और ज़रूरत पड़ने पर चिकित्सकीय मदद लें। आपकी एक सलाह मदद से किसी के ज़िंदगी बच भी सकती है। दोस्तों, जब जीवन नशे से मुक्त होगा तभी हमारे सपनों को सही उड़ान मिलेगी। और बातें तो बहुत हो चुकी और अब पेश है एक ऐसा गीत जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक संदेश भी लेकर आया है। नशे से दूरी, जीवन से दोस्ती। सुनिए ये गीत।

संदीप नाथ के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे कैलाश खेर और सपना मुखर्जी की आवाजों में कॉर्पोरेट फिल्म का ये गीत।

नमस्कार, जमशेदपुर कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं दोस्तों आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। जिसमें हम बातें करते हैं जिंदगी से जुड़े मुद्दों की, जो सिर्फ जानकारी नहीं होती बल्कि हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारे कल को भी बेहतर बनाने की बातें होती हैं, और साथ ही हम आपके मनोरंजन का भी ख्याल रखते हैं, है ना? तो दोस्तों कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं।

मित्रों, यानी आज 26 जून को विश्व रेफ्रिजरेशन डे भी मनाया जाता है। एक ऐसा दिवस जो शायद सुनने में तकनीकी लगे, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी सेहत, हमारे खान पान, अस्पतालों, दवाइयों और पर्यावरण तक से गहराई से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग सोचते हैं कि रेफ्रिजरेशन यानी बस फ्रिज, एसी या ठंडी हवा, लेकिन मित्रों, ये सच है

रेफ्रिजरेशन सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि आधुनिक जीवन की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। आज रेफ्रिजरेशन दिवस के मौके पर हम उन तमाम वैज्ञानिकों, तकनीशियनों, इंजीनियर्स और सभी मेहनतकशों का शुक्रिया अदा करें जिनकी मेहनत की वजह कर आज ये हमारे जीवन का इतना अहम हिस्सा बन चुकी है। मित्रों, ठंडक सिर्फ मशीनों में नहीं रिश्तों में भी बनी रहनी चाहिए। इसी खूबसूरत सोच के साथ आइए हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

विशाल मिश्रा की आवाज़ में भी आपने सुना एनिमल फिल्म का ये गीत। राजशेखर ने इस गीत को लिखा था और विशाल मिश्रा ने संगीतबद्ध किया था।

मित्रों, अभी हम बात कर रहे थे विश्व प्रशीतन दिवस यानी वर्ल्ड रेफ्रिजरेशन डे की, और अब हम बात करेंगे फिल्म अभिनेता अर्जुन कपूर की। जिनका आज जन्मदिन है, तो सबसे पहले उनके जन्मदिन पर हम उन्हें देते हैं बधाई।

अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपदा की आवाज़ सुनिए, भी आपने सुना अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा और शंकर एहसान लॉय का संगीतबद्ध किया टू स्टेट्स फिल्म का ये गीत। और ये था श्रोताओं कार्यक्रम का आखिरी गीत। इस गीत के साथ नमस्कार जमशेदपुर कार्यक्रम से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: ऊपर।
1: यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अब से बस थोड़ी देर बाद।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स के महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर कायल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने

0: किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। अमरीका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक हुई। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो NCB द्वारा आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हो रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थ के खिलाफ लड़ाई में लगे लोगों के प्रयासों की सराहना की है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारत ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के वैश्विक चुनौती के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के गिरोहों को खत्म कर दिया गया है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू LPG की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
1: LPG की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक LPG की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली LPG आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने PNG कनेक्टिविटी के स्टार्ट की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दिल्ली से प्रसारित समाचार अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12:05 हुए हैं। हम लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम शीर्षक गीत।

शीर्षक गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कभी इस तरह मेरे हम सफर, सभी चाहते मेरे नाम कर, अगर हो सके तो कभी कहीं मेरे नाम भी कोई शाम कर। कभी उनसे सुन मेरी दास्तां, कभी उनके साथ कलाम कर।

वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाई न थी, कि धूप छाँव का आलम रहा जुदाई न थी। ना अपना रंज न औरों का दुख, न तेरा मलाल, शबे फिराक कभी हमने यूँ गंवाई न थी। बिछड़ते वक्त उन आँखों में थी हमारी गजल, गजल भी वो जो किसी को अभी सुनाई न थी।

तुम हम सफर हुए तो हुई जिंदगी अजीज, तुम हम सफर हुए तो हुई जिंदगी अजीज, मुझ में तो जिंदगी का कोई हौसला ना था।

मुझे माफ कर मेरे हमसफर, तुझे चाहना मेरी भूल थी। मेरे गम की कोई दवा नहीं, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं, तेरा कोई मेरे सिवा नहीं, यही सोचना मेरी भूल थी।

ये था कार्यक्रम का आखिरी गीत, और अब चलते चलते हम अपने श्रोताओं को उन फिल्मों के नाम बताते चलें जिनका गीत अभी आप सुन रहे थे। बद्रीनाथ की दुल्हनिया, रिफ्यूजी, और प्यार हो गया, और मेरे हम सफ़र। इसी के साथ शीर्षक गीत का ये सफ़र अब ख़त्म हुआ।

यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। दिन के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इसके तहत आइए सुनते हैं राग भीम प्लासी में पंडित जसराज का ख्याल गायन।

राग भीमपलासी में भी आप सुन रहे थे पंडित जसराज का ख्याल गायन, और अब लीजिए सुनिए राग गौड़ सारंग में पंडित कुमार गंधर्व का ख्याल गायन।

राग और सारंग में अभी आप सुन रहे थे पंडित कुमार गंधर्व का ख्याल गायन। इसी के साथ कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत अब संपन्न हुआ। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। दिन के 1 बजने ही वाले हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अब से बस थोड़ी देर बाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत तैयार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है और इसे जीतनी भी है। गृह मंत्री ने कहा कि हमें ड्रग्स के व्यापारियों के प्रति सख्त रवैया अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले युवाओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाना होगा।
1: ड्रग तस्करी, संगठित अपराध, नार्को टेरर फाइनेंस और सीमा पार के आतंकी नेटवर्क के वित्त पोषण, एक इस प्रकार से इवॉल्विंग नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत

और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। भारत ने जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच हरित और सतत विकास की साझेदारी सफल रही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की है कि इस पर जल्द सहमति बनेगी। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकसित विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दो मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। आयरलैंड के कप्तान लोरकान टकर होंगे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: की मौत, आक्रोशित लोगों ने NH-23 किया जाम। और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन सहित कई नेताओं ने नशा मुक्त भारत का संदेश दिया। उपराष्ट्रपति ने युवाओं से नशे से दूर रहकर स्वस्थ और उद्देश्यपूर्ण जीवन अपनाने का आह्वान किया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में जुटे सभी लोगों के प्रयासों की सराहना की है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारत ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग की वैश्विक चुनौती के विरुद्ध मजबूत लड़ाई लड़ी है। सरकार की कार्रवाई से नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले कई गिरोहों का सफाया किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर जामताड़ा जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से नशा मुक्त समाज के संदेश के साथ जागरूकता रैली निकाली गई। प्राधिकार के सचिव पवन कुमार ने बताया कि रैली व्यवहार न्यायालय परिसर से शुरू होकर सुभाष चौक तक गई और वापस न्यायालय परिसर पहुंचकर संपन्न हुई।
1: 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोध दिवस एवं इंफ्रास्ट्रक्चर दिवस के अवसर पर जामताड़ा

0: जिले के सभी प्रखंड ब्लॉक में आज जागरूकता कार्यक्रम कराया जा रहा है। चेतन व्यवहार न्यायालय से परिसर से पूरे सुभाष चौक होते हुए पूरे जामताड़ा में जागरूकता कार्यक्रम रैली निकाली गई। नशे के प्रति प्रचार किया गया और लोगों से अपील की गई कि वो नशा ना करें, क्योंकि नशा करने से भविष्य खराब होता है।
1: रांची जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 28 से 30 जून तक विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार ने बताया कि अभियान के दौरान जन्म से 5 वर्ष तक के लगभग 5,05,524 बच्चों को पोलियो की दो बूंद तथा दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले दिन 28 जून को जिले के 3,893 पोलियो बूथों पर बच्चों को दवा पिलाई जाएगी, जबकि 29 और 30 जून को स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को खुराक देंगी। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपए शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। एक रिपोर्ट।
2: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपए होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपए होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपए होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपए और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपए है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रुपए का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: जमशेदपुर के मानगो नगर निगम क्षेत्र में फायर सेफ्टी जांच अभियान के दौरान 17 संस्थानों के निरीक्षण में 14 संस्थान सुरक्षा मानकों पर फेल पाए गए। अपर नगर आयुक्त जितेंद्र यादव ने संचालकों को तत्काल फायर सेफ्टी उपकरण अपडेट करने का निर्देश दिया गया है। निगम ने अभिभावकों से भी नियमों की अनदेखी की सूचना देने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह आज देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में दर्शन किए और देश तथा समाज की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। केंद्रीय मंत्री के साथ पार्टी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को नमन करते हुए कहा है कि उनका बलिदान आज भी करोड़ों लोगों को सत्य, न्याय और इंसानियत की राह पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। सोशल मीडिया पर जारी संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि इमाम हुसैन की शहादत साहस, दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास का प्रतीक है। मुहर्रम के अवसर पर कल निकलने वाले जुलूस को देखते हुए रांची शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। सुबह 10 बजे से जुलूस समाप्त होने तक अपर बाजार, महावीर मंदिर चौक, शहीद चौक, अल्बर्टेका चौक, सरजना चौक, मेन रोड और राजेंद्र चौक सहित कई प्रमुख मार्गों पर सामान्य और यात्री वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और आवश्यक होने पर ही इन क्षेत्रों की ओर जाने की अपील की है, ताकि मुहर्रम जुलूस शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। रांची नगर निगम चुनाव के 3 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी महापौर, उपमहापौर और पार्षदों का मानदेय तय नहीं हो सका है। रांची की मेयर रोशनी खलखो ने कहा है कि फंड और मानदेय नहीं मिलने से नगर निगम के नियमित कार्यों और विकास योजनाओं के संचालन पर असर पड़ रहा है।
3: मानदेय एक सम्मानजनक हो ऐसा हम लोग भी चाहते हैं और पहले भी मानदेय की सुविधाएं थी, इसलिए सरकार से आग्रह किया है। जब चुनाव हम लोग जीत करके आए तो एक पत्र के माध्यम से सरकार को हमने अवगत भी कराया है, तो जल्द से जल्द उन्हें सम्मानजनक एक मानदेय मिलना ही चाहिए ताकि सुविधाएं

0: जनप्रतिनिधि हैं उनको मिल सके।
1: राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,30,000 रुपए प्रति किलो है। रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग पर बारलोंग के पास हुए भीषण सड़क हादसे में बैंड ताशा पार्टी के 7 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार तेज रफ्तार कोयले लदे ट्रक ने ओवरटेक करने के दौरान सवारी वाहन को टक्कर मार दी। हादसे के बाद सभी घायलों को रामगढ़ सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां 7 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने NH-23 जाम कर सड़क सुरक्षा की मांग की। रांची के JSCA स्टेडियम में हुई भगदड़ की घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने JSCA प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा है कि इस मामले में JSCA अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज कर उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए।
2: अगर उनका पास चेक नहीं होना है, फ्री एंट्री है, तो जैसे कोई आया उसको स्टेडियम के अंदर एंट्री मिलनी चाहिए, लेकिन उनको सुबह से शाम तक खड़ा रखा गया और भीड़ जब बेकाबू हो गई तो उस बेकाबू भीड़ में गेट खोला गया जिससे बैरिकेड टूटे, महिलाएं घायल हुई, बच्चे घायल हुए। कोई व्यवस्था महिलाओं की अलग से नहीं थी, बच्चों के लिए नहीं थी।
1: झारखंड T20 क्रिकेट लीग फाइनल के दौरान रांची स्टेडियम में हुई भगदड़ में कई लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद SSP राकेश रंजन के नेतृत्व में SIT गठित कर 15 दिनों में जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर उपराष्ट्रपति ने नशा मुक्त भारत के संकल्प को दोहराया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत ने ड्रग्स के खिलाफ लड़ी सबसे मजबूत लड़ाई। राजधानी रांची समेत राज्य भर में 28 जून से शुरू होगा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में की बढ़ोतरी, 1 जुलाई से नई दरें होंगी लागू। मुहर्रम जुलूस को लेकर रांची में ट्रैफिक व्यवस्था में किया गया बदलाव। 27 जून को कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों के परिचालन पर रहेगी रोक। और रामगढ़ में भीषण सड़क हादसा, बैंड ताशा पार्टी के 7 सदस्यों की मौत, आक्रोशित लोगों ने NH-23 किया जाम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम फिल्म संगीत का कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर, हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
1: ज्ञान विज्ञान
2: इतिहास के पन्नों से,
1: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
0: मौसम का मिजाज,
1: अपने शहर की खबरें,
2: बातों मुलाकातों के साथ
0: सुरीला मनोरंजन
1: और भी बहुत कुछ।
0: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में
2: दिन के 11:05 से 12 बजे तक
1: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
3: नमस्कार जमशेदपुर।

विशाल मिश्रा के संगीत निर्देशन में भी आप सुन रहे थे मनोज मंतशिर का लिखा बॉर्डर टू फिल्म का ये गीत। विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार ने इस गीत को गाया था।

सुकृति कक्कड़ और साचेत टंडन की आवाजों में भी आपने सुना सुहैल हैदर का लिखा सयोनी फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद।

0: हेलो डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
0: हेलो डॉक्टर।
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
0: हेलो डॉक्टर।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फ़ोन नंबर है 06572960445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।

0: द गर्ल ऑन द ट्रेन इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। नेहा कक्कर की आवाज़ थी, कुमार के बोल और विपिन पादवा का संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत इस अंतराल के बाद।
1: जलवायु और नवाचार, यह यूनेस्को का संदेश है। आज दुनिया की लगभग एक तिहाई बिजली अक्षय ऊर्जा से आती है। नई खोज और बेहतर टेक्नोलॉजी की वजह से पवन और सौर ऊर्जा का तेजी से विकास हुआ है, क्योंकि ये सस्ती पड़ती है। कई इलाकों में हाइड्रो पावर अब भी महत्वपूर्ण है, जबकि जियोथर्मल और बायोमास जैसे स्रोत भी अक्षय ऊर्जा के विकल्प देते हैं। जब दुनिया जीवाश्म ईंधन छोड़ रही है, तो हमें उत्सर्जन कम करने और मजबूत टिकाऊ ऊर्जा प्रणालियां बनाने के लिए अक्षय ऊर्जा में निवेश करना जरूरी है। यहाँ एक रोचक तथ्य है, साफ ऊर्जा स्रोत अब दुनिया की बिजली का लगभग एक तिहाई हिस्सा दे रहे हैं। यह दिखाता है कि नई खोज बदलाव ला सकता है।

ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत के बाकी नगमों को लेकर। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

दर्शन रावल, जुनीता गांधी और रोचक कोहली की आवाज़ों में अभी आपने सुना धड़क टू फिल्म का ये गीत। गुरप्रीत सैनी ने इस गीत को लिखा था और जावेद मोहसिन ने संगीत बद किया था। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत का अगला नगमा।

फिल्म झुंड का ये गीत भी आप सुन रहे थे। सिद सियाराम की आवाज़ थी, अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा था और संगीत था अजय अतुल का।

आरपी दीवाना का लिखा ये गीत अभी आप सुन रहे थे सुखविंदर वडाली और नीति मोहन की आवाजों में, और ये था कार्यक्रम का आखिरी गीत। इस गीत के साथ फिल्म संगीत का ये सुरीला सफर अब खत्म हुआ।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अब से बस थोड़ी देर बाद, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: first T20 international since lifting the T20 World Cup. Captain Shreyas Iyer will lead a young squad that includes 15-year-old batting prodigy Vaibhav Suryavanshi. In the FIFA World Cup, Australia has qualified for the knockout stage after playing out a goalless draw against Paraguay in their Group D clash at the San Francisco Bay Area Stadium this morning. In another Group D fixture, Turkey signed off its World Cup campaign on a positive note with a 3-2 victory over the USA at Los Angeles Stadium. In another match, the Netherlands outclassed Tunisia by 3-1 in Kansas City to top Group F and set up a knockout clash with Morocco. In another Group F fixture, both Japan and Sweden stormed into the round of 32 as they played a 1-1 draw at the Dallas Stadium this morning. Japan will now face five-time champion Brazil in the next round. Ecuador also advanced to the knockout stage, beating Germany 2-1 in a Group E clash at the New Jersey Stadium early this morning. In men's hockey, India will face arch rivals Pakistan in its penultimate FIH Pro League match at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre in London this evening. The match is scheduled to begin at 10:20 p.m. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Home Minister Amit Shah calls for united fight against drugs, says drug menace poses threat to national security and future of youth. Uttar Pradesh police arrest 8 people in connection with Ram Mandir donation embezzlement case. India, along with 34 nations, signs US-led initiative to build resilient AI supply chains. Prime Minister Narendra Modi recalls sacrifices of Hazrat Imam Hussein on Muharram. In men's cricket, India to take on hosts Ireland in T20 International in Belfast this evening. All eyes on debutant prodigy Vaibhav Suryavanshi. And Australia qualify for knockout stage after goalless draw against Paraguay in Group D clash in FIFA World Cup. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान कहा मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका की नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया अब समाचार विस्तार से गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा सामाजिक व्यवस्था आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की
2: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए
1: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा
2: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमें करनी पड़ेगी।
1: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली एफआईआर के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। एसआईटी ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
3: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
4: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी 2 दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
5: For our business,

0: FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
1: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार हैं।
2: 60,000 स्टूडेंट्स
0: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
1: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाची के काटलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 MCC C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदाद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
3: भारत आज बिलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के

0: अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमेरिका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
1: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया।

अंग्रेजी और हिंदी में समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और अब पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे चंदनम में। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की पहली पेशकश।

0: नूरी फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गीत को लिखा था जान निसार अख्तर ने और तर्ज बनाई थी खय्याम ने। कार्यक्रम का अगला गीत इस अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

ब्रेक के बाद आइए हम आपको सुनवाते हैं फिल्म अनपढ़ का ये गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ है, राजा मेहंदी अली खां का ये लिखा नगमा है और मदन मोहन ने तर्ज बनाई है।

किशोर कुमार की आवाज में भी आप सुन रहे थे मजबूर फिल्म का ये गीत। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था।

मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे की आवाज़ों में भी आपने सुना हकीकत फिल्म का ये गीत। कैफ़े आज़मी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत और ये था कार्यक्रम का आखिरी गीत। इस गीत के साथ फिल्म संगीत का ये सफ़र अब ख़त्म हुआ। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। अगला प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से अब से बस थोड़ी देर बाद।

0: रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य जन स्वास्थ्य और उपभोक्ता सुरक्षा के लिए कड़े सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनके प्रयास एक मजबूत, स्वस्थ और नशा मुक्त भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को एक महान साहित्यकार बताया, जिनकी रचनाओं ने पीढ़ियों से भारतीयों में देशभक्ति और सांस्कृतिक गौरव की भावना को जागृत किया है। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर क्षेत्र के करंजो में आयोजित दो दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष आदित्य साहू ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने संगठन विस्तार पर जोर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से शुरू की गई जन कल्याणकारी योजना का उल्लेख करते हुए उन्हें आम लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का आह्वान किया।
1: प्रशिक्षण के माध्यम से हम कार्यकर्ता का भी निर्माण करने का काम करते हैं और यह प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमारे बूथ स्तर से लेकर के मंडल, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक सभी कार्यकर्ताओं को इस प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। संगठन का आंतरिक विषय होता है, हम चर्चा करने का काम करते हैं।
0: सरायकेला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने और समाज को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से 1 से 15 जुलाई तक 15 दिवसीय योग, औषधि, दर्शन एवं नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। मारवाड़ी धर्मशाला में प्रतिदिन सुबह 6 से 7 बजे तक आयोजित होने वाले इस निःशुल्क शिविर का संचालन योग शिक्षक एवं आयुर्वेद विशेषज्ञ वैद्य किशोर मिश्रा करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गिरिडीह जिले में 28 से 30 जून तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के दौरान लगभग 5 लाख बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर बच्चा सिंह ने बताया कि अभियान के सफल और शत प्रतिशत क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारियां की हैं।
2: 28 से 30 तारीख तक पल्स पोलियो की दवाइयाँ पिलाई जाएगी। 28 तारीख को गिरिडीह जिले के टोटल जो बूथ है

0: 2300 सैंतीस बूथ इस पर बच्चों को जो 0 से 5 साल के बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन जो अभी BOP भी बाइवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन की दो दवाइयां दी जाए।
1: आज आशूरा ए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने करबला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। मुहर्रम के अवसर पर कल रांची जिले में ताजिया और अखाड़ा जुलूसों के कारण यातायात प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले के सभी सरकारी गैर सरकारी और निजी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है। जिला उपायुक्त मंजुनाथ भजयंत्री के निर्देशानुसार केवल पूर्व निर्धारित परीक्षाएं अत्यंत आवश्यक होने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचना देकर कराई जा सकेंगी। प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधन अभिभावकों और नागरिकों से शांति और सौहार्द बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। सिमडेगा जिले की जलडेगा थाना पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में फरार चल रहे आरोपी आशीष साह उर्फ आशीष साव को गिरफ्तार किया है। SDPO DD पासवान ने बताया कि 14 अप्रैल को बांसचोर ओपी क्षेत्र में एक कार से लगभग 28 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था, जिसमें 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। झारखंड में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी की रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता

0: है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहाँ पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओ, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आँखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओ, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोबा कोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की परती।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
1: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
2: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर, ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
1: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
2: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
1: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
2: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
3: Stephen, happy birthday to you, Stephen.
4: Happy birthday, Stephen.
5: Thank you, Thomas.
6: Congratulations.
5: Thank you, John. Thank you so very much.
7: Hi, Martin. How are you?
3: Oh, fine.
7: Thanks for coming in. Please come in. Please.
4: Oh, yes, sure. Yes. Why not?
3: Come. Hey.
4: Come.
3: John, please come here.
4: Oh, sure.
7: Join us for a drink, please.
1: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओह गॉड, ओह गॉड।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूँ।

0: Dio salvi. Mi salvi pure. Pacias sal. Orci un
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हाँ में हाँ मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
2: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ১৯৮৫ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
2: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस
4: जी,
3: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
4: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल

0: इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
1: ओह।
0: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
2: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
0: जी।
2: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
0: तो लीजिए सुनिए।
3: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
4: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
5: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
4: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
5: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
6: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
4: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
5: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
6: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
4: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
7: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
5: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
8: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
4: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
5: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं। यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
4: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
9: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम, आ जाओ सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली। गुड़िया गौरव सब तैयार? वेरी गुड, तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
10: आग का गोला?
9: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दूं प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
10: सूरज।
9: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो।
10: बहुत आसान पूछते हो।
9: ओफो क्या करूँ, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं है।
10: अगली बार में बहुत मुश्किल।
9: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूँ, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियाँ तुम्हारे पास होती है ना?
10: हाँ।
9: कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
10: मुझे पता है सूरज आग का गोला होता है।
9: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
11: वो तारा होता है।
9: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक।
12: वो रात और दिन भी बनाता है।
9: एकदम सही एकदम सही।
11: वो हमें धूप भी देता है।
9: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
10: धूप से इतना अच्छी बात भी होती है।
9: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
10: विटामिन डी।
9: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश बहुत अच्छे।
11: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
9: हाँ हाँ बिल्कुल,
10: पेड़ों को खाना भी देता है।
9: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
10: धीरे धीरे रात घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
9: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं, और लगता क्या है जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
10: हाँ।
12: जब तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
9: हाँ हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
10: मौसी जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
9: हाय हाय क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना
10: वो तेज चलती है, तो ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
11: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
9: ना।
11: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
9: हाँ और सर्दियों में अच्छा लगता। तो बच्चों सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
10: मौसी वो बहुत बड़ा भी होता है।
9: बहुत बड़ा होता है
11: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
9: हम क्योंकि कहीं
10: दूर होता है इसलिए
9: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
10: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
9: हाँ
11: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
9: अरे वाह भाई ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा एक बात और, धरती का जो भाग

0: सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
1: सर्दी।
0: ओ, ऐसी वाली सर्दी ना। अच्छी लगती है सर्दी।
2: पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
0: हाँ, शुक्र है गर्मी में नहीं लगती है। सूरज आग का गोला, लेकिन
1: सूरज आग का गोला लेकिन
0: फिर भी जीवन दाता है।
1: फिर भी जीवन दाता है।
0: धरती काटे चक्कर इसके।
1: धरती काटे चक्कर इसके।
0: लगे ये चलता जाता है।
1: लगे ये चलता जाता है।
0: सर्दी गर्मी बनते इससे।
1: सर्दी गर्मी बनते इससे।
0: ये दिन रात बनाता है।
1: ये दिन रात बनाता है।
0: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
1: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
0: सूरज ये
1: कहलाता है।
0: शाबाश, सूरज ये कहलाता है। सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
2: मुझे एक और पहेली आज ही बता दो।
0: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है,
3: जल्दी आना। जल्दी आना।
0: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
2: हमने देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
0: मैं तो डर रही हूँ भाई। मैं कल आऊँ की नहीं आऊँ?
2: वो भी दस पूछेंगे।
0: दस पहेलियाँ? अच्छा चलो, मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना।
2: डर जाती है। आपके कोई मिला के 70 हो जाएंगे।
0: 70 हो जाएंगे? वो 10 से एकदम 70
3: नहीं, 80 हो जाएंगे।
0: फिर 100 हो जाएंगे, फिर 200। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुँचे मैं जा रही हूँ। टाटा, बाय बाय।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। और अब लीजिए सुनिए, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। इसके तहत आइए सुनते हैं दादरा में पंडित भजन सुपोरी का संतूर वादन।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे पंडित भजन सुपुरी का संतूर वादन। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ।

0: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत।
1: झारखंड के लोकगीत के साथ आज मैं राजेश जोहार। आज के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं उरांव लोकगीत। कलाकार हैं सोमराय तिर्की वसाथी।

0: सोमराय तिर्की और साथियों की आवाज़ में आप सुन रहे थे उरांव लोकगीत। इसी के साथ झारखंड के लोकगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए अनुमति, जोहार।
1: झारखंड के लोकगीतों का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से अब से बस थोड़ी देर बाद।

0: प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनके प्रयास एक मजबूत, स्वस्थ और नशा मुक्त भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। देवघर सर्किट हाउस में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और राष्ट्रीय जनता दल के देवघर विधायक सुरेश पासवान के बीच करीब आधे घंटे तक बैठक हुई। हाल के राजनीतिक घटनाक्रम और राज्यसभा चुनाव के बाद हुई इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। गिरिडीह जिले में 28 से 30 जून तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के दौरान लगभग 5 लाख बच्चों को पोलियोरोधी दवा पिलाई जाएगी। सिविल सर्जन डॉ. बच्चा सिंह ने बताया कि अभियान के सफल और शत प्रतिशत क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारियां की हैं। केंद्रीय पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने आज देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना की। उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक और विधिवत पूजन किया। आज आशुरा मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने करबला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। झारखंड में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: समाचार मुख्यांश भी आप आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और अब पेश है बज़्म-ए-क़व्वाली। फनकार हैं नुसरत फतेह अली खान।

आप सुन रहे थे कव्वाली, कलाकार थे नुसरत फतेह अली खान। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। संध्या के 4:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस गीत से।

बजरंगी भाईजान, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना अदनान समी की आवाज़ में। गीत लिखा था कौसर मुनीर ने और संगीत निर्देशन किया था प्रीतम ने।

जाने मन इस फिल्म का ये गीत आपने सुना सोनू निगम और सुजैन डिमेलो की आवाजों में। संगीत निर्देशन किया था अनु मलिक ने और गीत लिखा था गुलजार ने।

तुम बिन इस फिल्म का ये गीत आपने सुना जगजीत सिंह की आवाज़ में। संगीत से सजाया था इसे निखिल विनय ने और शब्द रचना की थी फैज़ अनवर ने। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं श्रोताओं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।

भूतनाथ रिटर्न्स। इस फिल्म का ये गीत आपने सुना ऋतुराज की आवाज में। संगीतबद्ध किया था इसे मुन्ना धीमन ने और गीत लिखा था, क्षमा करें श्रोताओं, संगीतबद्ध किया था राम संपत ने और गीत लिखा था मुन्ना धीमन ने। और इसी के साथ ही श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 5 बजने ही वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार मुख्यांश आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी निरोधक दिवस पर आज खूंटी के मुरहू स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। झालसा के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम में छात्राओं, शिक्षकों और स्थानीय लोगों को नशे के दुष्प्रभाव, NDPS अधिनियम के प्रावधानों तथा निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी गयी। नशा मुक्ति एवं अवैध तस्करी निषेध दिवस के अवसर पर साहिबगंज में जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष अखिल कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित इस अभियान का उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करना और नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना था। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर क्षेत्र के करंजो में आयोजित दो दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने संगठन विस्तार पर जोर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्हें आम लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का आह्वान किया। गढ़वा जिला प्रशासन की ओर से रक्त की कमी से जूझ रहे मरीजों की मदद के लिए कल गोविंद उच्च विद्यालय मैदान में मेगा रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्र ने जिले के नागरिकों, युवाओं, सामाजिक संगठनों और स्वयं सेवकों से अधिक संख्या में शिविर में पहुंचकर स्वैच्छिक रक्तदान करने की अपील की है। मुहर्रम के अवसर पर कल रांची जिले में ताजिया और अखाड़ा जुलूसों के कारण यातायात प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी और निजी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है। जिला उपायुक्त मंजुनाथ भजयंत्र के निर्देशानुसार केवल पूर्व निर्धारित परीक्षाएं अत्यंत आवश्यक होने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचना देकर कराई जा सकेंगी। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: समाचार मुख्यांश अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 MHz पर। संध्या के 5:02 हुए हैं। कार्यक्रम युवाणी के लिए करें जरा सा इंतजार।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

नमस्कार, शाम के 5:04 हो चुके हैं और मैं हूं क्षमा आपके साथ आकाशवाणी जमशेदपुर के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज 26 जून है और आज मुहर्रम है। ये कोई जश्न का महीना नहीं बल्कि सब्र, कुर्बानी और हक की जीत की याद है। आज से 1400 साल पहले 10 मुहर्रम को करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अपने 72 साथियों के साथ जुल्म के आगे सर झुकाने से इनकार कर दिया था। 3 दिन के भूखे प्यासे इमाम हुसैन ने अपने 6 महीने के बेटे अली

0: क्या मधुर गीत है। आइए अब चर्चा करते हैं आज के आधुनिक युग में नशा समाज के सामने एक गंभीर चुनौती बनकर उभर रहा है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा, तनाव, अकेलापन, सोशल मीडिया का दबाव तथा गलत संगति कई युवाओं को नशे की ओर धकेल रहे हैं। ऐसे समय में खेल, योग और रचनात्मक गतिविधियां न केवल नशे से दूर रहने का मार्ग हैं, बल्कि जीवन को सकारात्मक दिशा भी प्रदान करती है। पुरानी पीढ़ी के लोग अधिकतर शारीरिक गतिविधियों से जुड़े रहते थे, पर आज की युवा पीढ़ी का अधिकतम समय फोन, लैपटॉप, इंटरनेट के इर्द गिर्द घूमता है, जिससे शरीर में रोग के कारण बढ़ते हैं। इसलिए आवश्यक है कि युवा अपने जीवन में खेल, योग और अन्य रचनात्मक गतिविधियों को स्थान दे। मुझे भगवद गीता का एक श्लोक याद आ रहा है, योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। यानी अपना नाम, अपना काम एकाग्रता, निपुणता एवं संभाव से करना ही सच्चा योग है। डॉक्टर्स कहते हैं कि नशे से ग्रस्त युवा जब क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन जैसे खेलों पर ध्यान देते हैं तो उनका शरीर अन्य वासनाओं और नशीले पदार्थों से स्वयं दूर रहता है। योग और खेल तनाव, चिंता और अवसाद को खत्म करते हैं और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। आइए इस विषय पर हमसे जुड़ने वाली एक युवा से बात करते हैं।
1: नमस्कार, मेरा नाम मनुश्री है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और आज आप सबसे आकाशवाणी के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहती हूँ। हम सब रोज ही अखबार में पढ़ते हैं कि नशे की हालत में कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, किसी की जान चली गई, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जिनका मुख्य कारण व्यक्ति के होश में ना होना ही होता है। नशे की लत हमारे समाज को दीमक की तरह खोखला करते जा रही है, जिसका मुख्य कारण मुझे लगता है कि हमने क्रिएटिव एक्टिविटीज़ या फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना भी बंद कर दिया है। मेरी आप सबसे यह अपील है कि हम सब जीवन में अपना एक इंटरेस्ट खोजें, वो खेल कूद में हो सकता है, योग में हो सकता है, बागवानी में बहुत लोगों को इंटरेस्ट होता है, या कोई भी रचनात्मक गतिविधियाँ जैसे कि सिंगिंग, पेंटिंग, डांसिंग में हम अपना इंटरेस्ट खोजें, जिससे हम अपने जीवन का नशा बना लें। आशा करती हूँ मेरी बात कुछ लोगों को प्रभावित करेगी और वे अपने जीवन की रचनात्मक रुचि को ही अपना नशा बनाएंगे। धन्यवाद।
0: बिल्कुल सही कहा मनु आपने, सिर्फ खेल ही नहीं और भी रचनात्मक गतिविधियां हैं जो नशे के विरुद्ध सफल लड़ाई लड़ने में

करती हैं। लेखन, चित्रकला, संगीत, नृत्य, कविता और रंगमंच गतिविधियां जो शरीर को स्वस्थ रखती हैं, प्रतिभा भी निखारती हैं और एक अलग ही आत्मविश्वास पैदा करती हैं, जो युवाओं को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष, राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के निर्माता बनने में मदद करेगी। आइए अब सुनते हैं एक था टाइगर फिल्म का गीत सैयारा। गायक मोहित चौहान और तरन्नुम मलिक की आवाज़ में गीतकार कौसर मुनीर, संगीतकार हैं सोहेल सेन।

आइए अब बात करते हैं डिजिटल इंडिया और युवाओं के मुद्दे पर। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सफल बनाना है। सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना है। इस अभियान का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया था। डिजिटल इंडिया का सबसे अधिक प्रभाव युवाओं पर पड़ा है, क्योंकि वे नई तकनीकों को अपनाने में सबसे आगे हैं। युवाओं के लिए महत्व ये है कि डिजिटल इंडिया ने युवाओं को शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर प्रदान किए हैं। ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा घर बैठे गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्टअप कल्चर, ई कॉमर्स जैसे नए बिजनेस की पहल ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता की है। सरकारी फॉर्म, सेवा, परीक्षा व अन्य सभी कार्य डिजिटल माध्यम से काफी आसान हो गए हैं। और सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि युवा अपनी प्रतिभा को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखा सकते हैं और प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। चलिए एक ब्रेक लेते हैं और गीत सुनते हैं वीर ज़ारा का, गायक उदित नारायण, बोल हैं जावेद अख्तर के, संगीतकार मदन मोहन और उनके पुत्र संजीव कोहली द्वारा रिक्रिएटेड।

में अच्छी चीजों के साथ साथ कई चुनौतियां भी हैं, जैसे कि साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी का खतरा बढ़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता की कमी आज भी एक चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती है सोशल मीडिया के दुरुपयोग से स्वयं को बचाना। लाइक्स, फॉलोअर्स, व्यूज, कमेंट्स के चक्कर में मानसिक स्वास्थ्य व तनाव बढ़ता जा रहा है और ऊपर से घंटों रील्स देखने से शरीर पे भी गलत प्रभाव पड़ रहा है। निष्कर्ष यही है कि डिजिटल इंडिया युवाओं के जीवन में काफी अच्छा सकारात्मक परिवर्तन लाई है। अगर हम तकनीक का सही प्रकार से उपयोग करें तो भारत के विकास में उसका स्तंभ बन सकते हैं और महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अब समसामयिक गतिविधियों पर आते हैं। आज का तापमान अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस है। हल्की बारिश की संभावना है। कल फीफा वर्ल्ड कप के मैच के मैदान में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां इक्वाडोर ने 4 बार की चैंपियन जर्मनी को हराकर नॉकआउट में जगह पक्की कर ली। भारत वर्सेस आयरलैंड मेंस टी20 मैच में वैभव सूर्यवंशी ने इंटरनेशनल डेब्यू किया तथा महिला टी20 विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी। इसी के साथ जाने का समय हो चला है। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।

युवाणी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम।

श्रोता साथी, आज का दिन विशेष है क्योंकि आज हम मुहर्रम, जो इस्लाम संप्रदाय का एक प्रमुख त्यौहार है, मना रहे हैं। श्रोताओं, मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और इसे बेहद पवित्र महीना माना जाता है। विशेष रूप से इसकी 10वीं तारीख यानी आशुरा, ये इतिहास की उस महान घटना की याद दिलाती है जब इमाम हुसैन और उनके साथियों ने सत्य, न्याय और मानवता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। श्रोताओं, करबला की लड़ाई हमें संदेश देती है कि अन्याय के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। इमाम हुसैन का जीवन साहस, ईमानदारी, धैर्य और इंसानियत का प्रतीक है। उनका बलिदान केवल एक समुदाय के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुहर्रम के अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों में लोग ताजिए निकालते हैं, मजलिसों का आयोजन होता है।

त्याग और बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि देते हुए श्रोताओं, आत्मचिंतन, संयम, भाईचारे, समाज में प्रेम और सद्भाव का संदेश फैलाने और इस ओर ही प्रयास रहता है। मुहर्रम त्योहार है संकल्प लेने का कि सत्य, न्याय, करुणा और आपसी सम्मान के मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएंगे और शांति, एकता और सद्भाव को मजबूत बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ बढ़ते हैं श्रोताओं कार्यक्रम में आगे।

आपने सुना फिजा फिल्में, ए आर रहमान, कदम गुलाम मुस्तफ़ा, मुर्तजा गुलाम मुस्तफ़ा और श्रीनिवास को। शब्द रचना शौकत अली की थी और संगीत निर्देशन था अनु मलिक का।

0: और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब बारी जानकारी लेने की। जानकारी हम लेंगे भेंटवार्ता के जरिए। विषय है पेट का कैंसर रोग, रोकथाम एवं जागरूकता। जानकारी देंगे डॉक्टर कर्नल शिवराज चौहान। बातचीत कर रही हैं हमारी सहयोगी इंदु पात्रा।
1: श्रोताओं, कैंसर की बीमारी को लेकर लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल और भ्रांतियां उत्पन्न होती रहती है। कई बार कैंसर के लक्षण देखने पर भी लोग सवाल पूछने से कतराते हैं। ऐसे में जब कैंसर आखिरी स्टेज पर पहुंचता है तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कैंसर से जुड़े तमाम इसी तरह के सवालों और खान पान और खास करके पेट के कैंसर से संबंधित समस्याओं के निदान के बारे में आज हम बातचीत करेंगे टाटा मेन हॉस्पिटल के हेड कंसल्टेंट इन सर्जरी एंड मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर एंड एचओडी सर्जरी डॉक्टर चौहान जी से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में।
2: धन्यवाद आपके इस आमंत्रण के लिए।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि पेट का कैंसर क्या होता है और ये कितनी बड़ी समस्या है भारत में।
2: देखिए, कैंसर क्या होता है इसको जानते हैं। जब शरीर की कोशिकाओं के डीएनए में कोई त्रुटि, जिसे म्यूटेशन कहते हैं, आती है तो ये कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होती हैं और बढ़ती रहती हैं और एक ट्यूमर का रूप ले लेती हैं और यह ट्यूमर फिर शरीर में आगे फैलने लग जाता है। शुरू में यह आसपास के अंगों में जा पहुंचता है और आखिरी स्टेज में ये ब्लड के माध्यम से हमारे लिवर, फेफड़े, हड्डियों और मस्तिष्क तक जा सकता है। भारत में आमाशय का कैंसर विकसित देशों के मुकाबले में काफी कम है। देश के दक्षिणी राज्यों एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में इसका प्रचलन बाकी देश से अधिक है। मिजोरम में इसके मामले देश में सबसे अधिक है। गैस्ट्रिक कैंसर पुरुषों में चौथा सबसे आम कैंसर है, जबकि विश्व में कैंसर से होने वाली मृत्यु दर में यह दूसरे नंबर पर आता है। दक्षिण पूर्व एशिया, जापान, चीन और कोरिया में इसका प्रचलन पूरे विश्व में सबसे अधिक है। इसका मुख्य कारण नमक युक्त संसाधित भोजन की खपत है।
1: तो सर, पेट के कैंसर के लक्षण क्या हैं? हम कैसे जानेंगे कि किसी को भी पेट का कैंसर है, वो पीड़ित है?
2: शुरुआती अवस्थाओं में इसके लक्षण बहुत जनरल से रहते हैं, जैसे अपच, पेट में जलन, पेट का फूलना, लगातार कमजोरी या थकान का अनुभव होना, भूख न लगना, थोड़ी मात्रा में भोजन के बावजूद पेट भरा भरा लगना, वजन कम होना, एनीमिया, बाद में पेट में दर्द, लगातार उल्टी आना या काले रंग का मल होना भी इसका एक लक्षणों में से एक है।
1: तो डॉक्टर साहब, ये तो बात हो रही है पेट के कैंसर की, तो क्या अगर दूसरे भी कैंसर की अगर हम बात करें तो उसके लक्षण भी क्या इससे मिलते जुलते हैं?
2: शुरुआती अवस्था में सभी कैंसर के लक्षण तकरीबन एक जैसे होते हैं, लेकिन जब लगातार उल्टी आने लग जाती है या काले रंग का मल होने लगता है तो लगता है कि ये कैंसर शायद पाचन तंत्र से है।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, आखिर पेट के कैंसर का निदान कैसे किया जाता है?
2: सबसे पहली आवश्यकता होती है चिकित्सीय परामर्श की, जहां चिकित्सक आपके लक्षणों के आधार पर तय करता है कि क्या आपको पेट के कैंसर की संभावना है। यदि ये संभावना होती है तो इसको इंडोस्कोपी के माध्यम से जांच की जाती है। इंडोस्कोपी में मुंह के माध्यम से एक पतली लचीली नली वो पेट के अंदर डाली जाती है और पेट की छवि को मॉनिटर पे देखा जाता है। संशय युक्त स्थान से एक छोटा सा नमूना, जिसको हम बायोप्सी कहते हैं, लिया जाता है और इस बायोप्सी को माइक्रोस्कोप में पैथोलॉजिस्ट के द्वारा जांच की जाती है और तब कैंसर का पता चलता है।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, इसके उपचार के क्या तरीके हैं और कीमोथेरेपी क्या होती है?
2: जैसे ही हमें कैंसर पता चलता है, हमको पता लगाना होगा कि ये किस स्टेज का या किस श्रेणी का कैंसर है, इसका कितना प्रसार हो गया है। इसके लिए सीटी स्कैन या पेट सीटी स्कैन किया जाता है, जो हमको बताता है कि ये कैंसर शरीर के किन किन अंगों तक फैल चुका है और इसकी अब क्या स्टेज है, क्योंकि इलाज इस स्टेज पे ही डिपेंड करता है।
1: जी जी,
2: कैंसर का इलाज आमतौर से मल्टी मोडेलिटी ट्रीटमेंट के आधार पर किया जाता है, जिसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी को संयोजित किया जाता है। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर कैंसर का जरा सा लेश मात्र अंश भी शरीर में छूट जाए तो ये दोबारा आ जाता है। तो इस कैंसर का जब हम इलाज करते हैं तो आरंभिक अवस्था के कैंसर को हम का प्राथमिक उपचार सर्जरी है। सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी को सर्जरी से संयोजित किया जाता है और इसको हम मल्टी मोडेलिटी ट्रीटमेंट कहते हैं। यह सर्जरी दो तरीके से की जाती है। ट्रेडिशनली ओपन सर्जरी, जिसमें एक चीरा देकर आंतरिक अंगों तक पहुंचा जाता है और फिर कैंसर को शरीर से बाहर निकाला जाता है। लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक

0: या रोबोटिक सर्जरी से मरीज का आईसीयू स्टे और उसको जल्दी डिस्चार्ज भी उसको होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया सर्जरी के बारे में, और मैंने आपको ये भी बताया कि कैंसर का समग्र इलाज करने के लिए हमें कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का भी प्रयोग करना पड़ता है। कीमोथेरेपी में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवाओं का प्रयोग किया जाता है। बेहतर परिणाम के लिए कई दवाएं एक साथ दी जाती हैं। इन्हें एक चक्र के रूप में विशिष्ट क्रम में दिया जाता है, जिसे साइकिल बोलते हैं। ये कीमोथेरेपी तीन प्रकार से दी जाती है। पहली नियोएडजुवेंट, जिसमें ऑपरेशन से पहले ट्यूमर को सुखाकर छोटा किया जाता है ताकि ऑपरेशन सरल हो सके। एडजुवेंट थेरेपी, जिसमें कीमोथेरेपी का प्रयोग ऑपरेशन के पश्चात किया जाता है और इसमें आंख से ना दिखने वाली कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। और पैलेटिव, जो जब कैंसर फैल जाता है और ऑपरेशन के लिए सूटेबल नहीं होता तो ये बढ़े हुए कैंसर की गति को धीमा करता है और जिंदगी को लंबा करता है और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है। कैंसर के क्षेत्र में मैंने जैसे आपको बताया अनेकों अनेक क्रांतिकारी उपलब्धियां हुई हैं। जैसे मैंने आपको बताया इंडोस्कोपी और पेट सीटी स्कैन, जिससे हम इनको करेक्ट रूप से स्टेज कर सकते हैं। इलाज में भी मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी की नई तकनीकों का उदय हुआ है। कीमोथेरेपी में टारगेटेड थेरेपी का प्रचलन हो रहा है, जिसमें स्पेशलाइज्ड दवाइयों का प्रयोग कर सिर्फ कैंसर की कोशिकाओं को ही नष्ट किया जाता है और सामान्य कोशिकाएं सुरक्षित रहती हैं। और इसमें हर्ट्यूनियो और एंटी एंजियोजेनेसिस थेरेपी भी शामिल है। एक नई थेरेपी जिसको हम इम्यून थेरेपी बोलते हैं, यह कैंसर से लड़ने के लिए रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, उसका उपयोग करती है और इसके द्वारा कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करती है। इम्यून चेक पॉइंट इनिबिटर इसी इम्यूनोथेरेपी का एक प्रकार है।
1: तो डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भ्रांतियां हैं कि जब कीमोथेरेपी होती है तो बाल झड़ जाते हैं, इस तरह की लोग कहीं ना कहीं डरे रहते हैं इस तरह से, तो ये कितना सच है?
0: जैसे मैंने आपको बताया कि कीमोथेरेपी में कैंसर कोशिकाओं के अलावा बाकी शरीर की सामान्य कोशिकाओं में भी इनका असर पड़ता है और इसके दौरान शरीर से बाल झड़ सकते हैं, लेकिन ये एक टेम्परेरी प्रोसीजर है और ये जल्द ही शरीर के बाल पुनः वापस आ जाएंगे। 3 से 6 हफ्ते के अंदर में बाल पुनः प्राप्त हो जाएंगे और नई दवाइयों से शरीर से बाल झड़ने को भी कम किया जा सकता है।
1: तो डॉक्टर साहब, अगर किसी भी मरीज को एक बार कैंसर होता है, पेट का कैंसर, तो क्या उसमें फिर से संभावना रहती है दूसरी बार होने की?
0: कैंसर की बीमारी हम जैसे जानते हैं, ये अन्य बीमारियों से बिल्कुल अलग होती है और पूर्ण इलाज होने के बावजूद दोबारा कैंसर होने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए हम मल्टी मोडेलिटी ट्रीटमेंट, जिसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का प्रयोग करते हैं और सूक्ष्म रूप से बची हुई कोशिकाएं को नष्ट करते हैं, क्योंकि एक भी कोशिका अगर बच जाए तो कैंसर पुनः आ सकता है।
1: तो डॉक्टर साहब, इसका इलाज कितना लंबा चलता है?
0: कैंसर का इलाज 3 से 6 महीने चलता है और इसमें कीमोथेरेपी के 3 से 6 साइकिल दिए जाते हैं और ये साइकिल 2 से 3 हफ्तों के अंतराल में दिए जाते हैं। फिर उसके बाद एक ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन में निकलने वाले ऊतकों की जांच की जाती है और अगर जरूरत पड़े तो रेडियोथेरेपी भी दी जाती है, और अगर रेडियोथेरेपी दी जाए तो इसको 1 महीने तक दिया जाता है। तो तकरीबन पूरा इलाज करने में 3 से 6 महीने का समय लगता है।
1: डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि पेट के कैंसर से बचने के आखिर क्या तरीके हैं?
0: जैसा कि मैंने बताया कि पूर्णता जानकारी तो नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन कई प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज पर काम हो रहा है। वजन को नियंत्रण में रखना, स्वस्थ जीवन पद्धति को अपनाएं, जिसमें शारीरिक गतिविधियां और नियमित व्यायाम करें, रेशेदार फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाजों का प्रयोग कैंसर को नियंत्रण में रखता है। नमकीन, स्मोक्ड और प्रोसेस्ड फूड का कम से कम प्रयोग करें। शराब ना पिएं, धूम्रपान और तंबाकू के सेवन से बचें, और अगर पेट में एच पायलोरी का संक्रमण होता है तो उसका इलाज कराएं। और जब भी कोई भी शारीरिक लक्षण हो उसको इग्नोर ना करें और चिकित्सीय परामर्श लें, क्योंकि अगर शुरुआती अवस्था में कैंसर डायग्नोस कर लिया जाए तो उसको पूर्णतः खत्म किया जा सकता है।
1: आपसे आखिर में चलते चलते डॉक्टर साहब, एक सवाल हम करना चाहेंगे कि जमशेदपुर में इसके इलाज के क्या क्या सुविधाएं हैं?
0: मेहरबाई मेमोरियल टाटा कैंसर हॉस्पिटल और टाटा मेन हॉस्पिटल में इसके इलाज की पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ सभी प्रकार की आधुनिक यंत्र और निदान और उपचार की सुविधाएं यहाँ पर हैं। यहाँ पेट सीटी, सीटी स्कैन और कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और कैंसर सर्जरी की भी सभी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। और ये सुविधाएं मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आयुष्मान के माध्यम से भी गरीब मरीजों को उपलब्ध हैं। तो पैसे की कमी को इलाज के बीच में ना आने दें और जरूर इन हॉस्पिटल्स में आएं और अपने बीमारी का उपचार कराएं।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने पेट के कैंसर पर इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

श्रोता साथी, आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, पेट का कैंसर रोग, रोकथाम एवं जागरूकता। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर कर्नल शिवराज चौहान। बातचीत कर रही थी हमारी सहयोगी इंदु पात्रा। हम आपको बता दें श्रोताओं, इस भेंटवार्ता का पुनः प्रसारण किया गया।

आपने सुना क्या यही प्यार है फिल्म का गीत बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाजों में। श्रोता साथी, हमारा जीवन अमूल्य है, इस अमूल्य जीवन की रक्षा जरूरी है। शारीरिक मानसिक स्वस्थता जरूरी है, पर कुछ लोग इस अमूल्य जीवन को नशे के अधीन होकर नुकसान पहुंचाते हैं। नशा, श्रोताओं, ये विषय हमारे समाज, युवाओं और परिवारों के भविष्य से जुड़ा है, तो नशे को ना कहें और जिंदगी को हाँ। श्रोताओं, अनमोल जीवन में हमें अपने सपनों को पूरा करने, अपने परिवार को खुशियां देने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर देता है। लेकिन जब नशा हमारी जिंदगी में प्रवेश करता है तो ये धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, रिश्तों और भविष्य को नुकसान पहुंचाने लगता है।

कई बार लोग तनाव, साथियों के दबाव, जिज्ञासा या दिखावे के कारण नशे की शुरुआत कर देते हैं। शुरुआत में एक आदत लगती है श्रोताओं, लेकिन धीरे धीरे ये लत बन जाती है। नशा व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्षमता को कमजोर करता है, आर्थिक परेशानियां बढ़ाता है और परिवारों में तनाव का कारण बनता है। श्रोता, विशेषज्ञों का मानना है कि नशे से दूर रहना ही हितकर है। इसके लिए समय का सकारात्मक उपयोग, खेल कूद, पढ़ाई, योग, संगीत, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना और न केवल हमें ये सब व्यस्त रखते हैं बल्कि हमारे व्यक्तित्व का भी विकास करते हैं। श्रोता, यदि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति जो नशे की समस्या से जूझ रहा है तो उसे अकेला ना छोड़ें, उनका समर्थन करें, उसे सही मार्गदर्शन दें और आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों की सहायता लेने के लिए प्रेरित करें। आपकी एक छोटी सी पहल किसी की जिंदगी बदल सकती है। आज आवश्यकता है श्रोताओं, हम सभी मिलकर एक जागरूक और नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। घर, स्कूल, कॉलेज और कार्यस्थल, हर जगह नशे के दुष्परिणामों के बारे में खुलकर चर्चा करें। मैं नशे से दूर रहूंगा, दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करूंगा, मैं अपने स्वास्थ्य, अपने सपने और अपने भविष्य को प्राथमिकता दूंगा, मैं नशे को ना और जिंदगी को हाँ कहूंगा, ये संकल्प लेना जरूरी है। श्रोताओं, इसी के साथ कल कारखाने का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर शामिल होने की अपील की।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही अपने आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि AI विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यी जांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों का त्वरित निवारण और व्यापार करने में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि 15 अगस्त से प्रभावी होने वाला भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता ब्रिटिश संसदीय इतिहास में सबसे तेजी से लागू होने वाला व्यापार समझौता बन जाएगा। कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई थी। बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट मैच भारत और आयरलैंड के बीच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा।

0: लो 4 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत।
1: झारखंड के लोकगीत के साथ मैं राजेश जुहार। आज के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं खरिया लोकगीत। कलाकार हैं बुधराम खरिया।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 6:20 होने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आदौ मुख्य वार्ताः। गृहमंत्री अमित शाहः मादक द्रव्यानां विरुद्धं संयुक्त संघर्षस्य आह्वानं कृतवान्। तेन प्रतिपादितं यत् मादक द्रव्यानां विभीषिका राष्ट्रिय सुरक्षायाः यूनां भविष्यस्य कृते च संकटं जनयति। अयोध्यायाः राम मंदिर दान राशि स्थेय प्रकरणे अष्टौ जनाः निगडिताः। पैक सिलिका संधौ कृत्रिम बुद्धिमत्ता आपूर्ति श्रृंखलायै भारतेन सह चतुस्त्रिंशत् देशानां हस्ताक्षरं जातम्। मुहर्रम पर्वणि प्रधानमन्त्रिणा हजरत इमाम हुसैनस्य त्यागाः संस्मृताः। अपि च क्रीडावार्तासु, यूएस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगितायां भारतस्य युवा क्रीडकः रौनक चौहानः चीनी ताइपे क्रीडकं चौ तिएनचेन इत्यमुं पराजित्य प्रागुपान्त्य चक्रं प्राविशत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन अद्य मादकद्रव्यानां विरुद्धं संयुक्तसंघर्षस्य आह्वानं विहितम्। मादकद्रव्यानां प्रकोपः राष्ट्रियसुरक्षायै सामाजिकस्थिरतायै आर्थिकहिताय यूनां देशस्य च भविष्याय भयं जनयति। सः आध्यात्मिकनेतृभ्यः युवभ्यः मातृभ्यः अस्य संघर्षस्य कृते एकस्मिन् मञ्चे आगत्य कार्यं कर्तुं च आग्रहम् अकरोत्। श्रीशाहः नवदिल्ल्यां नार्को कोऑर्डिनेशन केन्द्रस्य दशमशीर्षस्तरीय सभाम् अभिसंबोधयन् एतानि वक्तव्यानि प्रायच्छत्।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: श्री शाह अवोचत यत् चतुरुत्तरद्विसहस्रतः चतुर्दशाधिकद्विसहस्रपर्यन्तम् अधिकारिणः प्रायः 26 लक्ष किलोग्राममितं संश्लेषितमादकद्रव्याणि गृहीतवन्तः। तस्य अपेक्षया 14 लक्ष किलोग्राममितं 26 लक्ष किलोग्राममितं गृहीतानि संश्लेषितमादकद्रव्याणि 8.11 मिलियन किलोग्राममितं यावत् वर्धितम्। सः अवोचत् यत् मादकद्रव्याणां व्यापारस्य विरुद्धं सर्वकारस्य अभियानम् अविरतं प्रगतिं कुर्वदस्ति इति अङ्कैः ज्ञायते। मादकद्रव्याणां निवारणस्य प्रयत्नानां विषये श्रीशाहः अवोचत् यत् नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इत्यनेन मादकद्रव्याणाम् अपराधसम्बद्धानां सूचनानां समयोचित आदान प्रदानार्थम् अनेकानि ऑनलाइन पटलानि विकसितानि सन्ति।
1: पहला स्तंभ है एनफोर्समेंट इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस। इसका उद्देश्य पूरे नेटवर्क पर लक्षित इंटेलिजेंस लीड कार्रवाई करें और उनके नेटवर्क को नष्ट कर दें। दूसरा है प्रीकर्सर्स एवं सिंथेटिक ड्रग कंट्रोल। उत्पादन स्तर पर ही हमने नशे को रोकने की रणनीति अपनानी पड़ेगी और कैपेसिटी बिल्डिंग कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग जो तंत्र को सक्षम बनाने के लिए और आधुनिक बनाने के लिए ये चौथे स्तंभ की रचना की गई है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य अवोचत् यत् नशा मुक्त भारत अभियानं जनसहभागित्वेन चालितं जनांदोलनं जातम्। मादक द्रव्य मुक्त भारत निर्माणस्य महत्व विषये सामाजिक न्याय सशक्तिकरण राज्य मंत्रिणः बीएल वर्मणः लेखं विनिमयी कुर्वन् श्रीमोदी एतत् अवोचत्। उत्तर प्रदेश आरक्षकेण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासस्य दान राशि स्थेय प्रकरणे एफआईआर इति प्रथम सूचना प्रतिवेदनाधारेण 8 जनाः निगडिताः। इदं तावत् प्राथमिकं प्रतिवेदनं मुख्यमन्त्रिणः योगी आदित्यनाथस्य निर्देशने विशेष निरीक्षण दलस्य अनुशंसनानन्तरं पञ्जीकृतमासीत्। इदं प्रकरणं श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासेन प्राप्तानां उपहाराणां दानानां च स्थेय सम्बन्धिनां आरोपाणां प्रकाश

0: कार्यक्रम कृषि जगत के लिए करें जरा सा इंतजार।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
2: 8700001424।

कृषक मित्रों, कैसे हैं आप सब? वैसे तो हम आपको देख नहीं सकते, लेकिन आपके द्वारा हमारे कार्यक्रम को मिलने वाला स्नेह और प्यार के माध्यम से हमें आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें जरूर नजर आने लगी है। झारखंड में मानसून का सुस्त चाल बेशक आपको चिंतित कर रहा होगा, अभी भी समय है। यदि मानसून ने करवट बदली तो निश्चित ही आपके क्षेत्र में झमाझम बारिश होगी और चेहरे पर जो चिंता की लकीरें हैं वो मुस्कुराहट में बदलेगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। कार्यक्रम कृषि जगत के आज के सफर में मैं हूँ आपके साथ आपका वही जाना पहचाना दोस्त राजेश जोहार।

आज के इस अंक में हमारे समाज में फैले नशा और इसके दुष्परिणाम के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे सदर अस्पताल जमशेदपुर के मनोचिकित्सक डॉक्टर महेश हेमरम से। होगी खेती किसानी से संबंधित बातें और एक मधुर लोकगीत। तो चलिए करते हैं आगाज कुछ जरूरी बातों के साथ। किसान भाइयों, ड्रिप सिंचाई पद्धति सिंचाई की एक उन्नत तकनीक है जो पानी की बचत करता है। इससे पानी बूंद बूंद करके पौधे या पेड़ की जड़ में सीधा पहुंचाया जाता है, जिससे पौधे की जड़ें पानी को धीरे धीरे सोखते रहते हैं। पौधों को उर्वरक पहुंचाने के लिए भी उर्वरक को घोल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंचाई की यह तकनीक उन क्षेत्रों के लिए काफी सही मानी जा रही है जहां जल की कमी तथा जमीन असमतल और सिंचाई प्रक्रिया काफी खर्चीली होती है। किसान भाइयों, यदि आप भी ड्रिप सिंचाई विधि को अपनाना चाहते हैं तो आपको ये बता दें कि इसके लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 80 से 90% तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

आइए अब बात करते हैं जलवायु अनुकूल कृषि में विविधीकरण से संबंधित। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बदलते जलवायु के साथ कैसे खेती को अपनाया जाए, यह दृष्टिकोण बदलता मौसम, पानी की कमी और मिट्टी के खराब स्वास्थ्य से होने वाले नुकसान से बचाता है और किसानों की आय में स्थिरता लाता है। एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलें उगाने से मिट्टी में प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है और कीटों का प्रकोप कम होता है। उदाहरण के लिए आप गेहूं के साथ सरसों या दालें लगा सकते हैं। ऐसे में यदि मौसम की मार या बाजार में उतार चढ़ाव से एक फसल खराब होती है तो दूसरी फसल से भरपाई हो जाती है। एक ही फसल बार बार उगाने के बजाय बदल बदल कर फसल लगानी चाहिए। चावल गेहूं के चक्र की जगह दलहन या तिलहन जैसी कम पानी वाली फसलें अपनाने से भूजल स्तर और मिट्टी की सेहत में सुधार होता है। कम बारिश और सूखे वाले क्षेत्र में बाजरा, रागी और ज्वार जैसी जलवायु सहिष्णु फसलों का चयन आप कर सकते हैं। ये विपरीत तापमान में भी अच्छा उत्पादन देती है। तो इस तरह किसान भाइयों, जलवायु अनुकूल कृषि को अपनाकर आप फसल की बर्बादी से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं और एक निश्चित आय अर्जित कर सकते हैं।

0: कृषक बंधुओं, आज है अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस। नशा या मादक पदार्थों का सेवन किस तरह से हमारे समाज में फैलता जा रहा है, इससे हम सभी वाकिफ हैं। जरूरत है इससे होने वाले दुष्परिणामों के प्रति जागरूक होने की और समाज में फैलने वाले इस जहर से समाज को बचाने की। नशा या मादक पदार्थों के सेवन और इससे होने वाले दुष्परिणाम, इसी विषय पर आइए अब सुनते हैं भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर महेश हेम्ब्रम। श्रोताओं, आज हमारे समाज में नशा एक गंभीर रूप लेता जा रहा है। युवा और कुछ बुजुर्ग तो इसके गिरफ्त में हैं ही, लेकिन आज बच्चे भी इसके गिरफ्त में काफी तेजी से आते जा रहे हैं और ये हमारे समाज के लिए एक कलंक बनता जा रहा है। नशा को कैसे दूर करें और अगर कोई किसी चीज का नशा करता है तो उससे फिर कैसे, मानसिक रूप से उसे कैसे ठीक किया जाए, इस बारे में बातें करने के लिए आज हमारे साथ हैं सदर हॉस्पिटल जमशेदपुर के मनोचिकित्सक डॉक्टर महेश हेम्ब्रम। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार
0: डॉक्टर साहब। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जो नशा हमारे समाज में है उसे आप किस नज़र से देखते हैं?
1: देखिए, नशा जो है वो आज का प्रॉब्लम नहीं है
0: जी।
1: जब से मनुष्य है तब से नशा है
0: जी, किसी न किसी रूप में,
1: किसी न किसी फॉर्म में हमेशा रहा ही है
0: जी।
1: एक इंटीग्रल पार्ट रहा है, मतलब मनुष्य का और नशा का। हम लोग किसी भी चीज को प्रॉब्लम हम लोग तब मानते हैं जब हमारा सोशियो ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन होता है
0: जी।
1: सोशियो ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन मतलब कि हम सोसाइटी में एक नशे के कारण जो है एक सोसाइटी में अपना रोल निभा नहीं पा रहे हैं। ऑक्यूपेशनल मतलब अगर कोई व्यक्ति है जो कहीं काम करता है वो अपने काम पे नहीं जा पा रहा है
0: जी।
1: एक स्टूडेंट है वो स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर पा रहा है
0: जी।
1: एक गृहिणी है वो घर का काम नहीं कर पा रही है, तो उसके जो नॉर्मल जो दिनचर्या का जो रूटीन है या उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको अगर वो नशे के कारण नहीं निभा पाता है तब हम उसे एक प्रॉब्लम स्टेटस बोलते हैं।
0: अच्छा,
1: नहीं तो हर आदमी जो नशा करता है या नशीला पदार्थ यूज करता है तो हम सबका इलाज नहीं करते।
0: अच्छा,
1: तो इसको समझने के लिए यह है कि हम लोग कुछ टर्म्स यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कि यूज, अब्यूज और डिपेंडेंस
0: जी।
1: जैसे कि किसी चीज का सेवन करना, एक उचित मात्रा में सेवन करना, जैसे दवाई भी जितनी भी नशीली पदार्थ है पहले कभी ना कभी या अभी भी वो दवा के रूप में यूज होती है, मगर उसका एक लिमिटेड डोज होता है, लेने की एक पद्धति होती है, रेजिम होता है। उससे अगर हम लोग ज्यादा यूज करते हैं तो उसको हम लोग मिसयूज या अब्यूज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि ब्राउन शुगर का एक घटक है जिसे ओपोइड हम लोग बोलते हैं
0: जी।
1: तो वो दर्द के लिए, कैंसर पेन के लिए यूज होता है।
0: अच्छा,
1: अगर हमें पेन नहीं है तब भी हम उसको यूज कर रहे हैं तो ये अब्यूज हुआ, गलत इस्तेमाल हुआ उसका।
0: अच्छा,
1: उससे ज्यादा अगर हम लोग यूज करते हैं तो इसको हम लोग डिपेंडेंस बोलते हैं या उस चीज के बिना वो रह नहीं पाता,
0: उसके आदि हो गया है,
1: उसका आदि हो जाता है। तो ये इसे हम लोग एक प्रॉब्लम स्टेटस मानते हैं। ठीक है,
0: तो ये किस तरह से हमारे समाज को एक खोखला करता जा रहा है। कुछ ऐसी दवाएं हैं जो लोग यूज तो करते हैं लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अगर जरूरत से ज्यादा यूज करे तो वो नशे का रूप ले लेता है और मानसिक रूप से लोग अपने स्वास्थ्य को खराब करने लगते हैं।
1: बिल्कुल सही। जैसे हम लोग झारखंड के जिस एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे हड़िया रासी ये जो एक कॉमन है, ये एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है विच इज सोशली एक्सेप्टेबल
0: जी,
1: मतलब
0: समाज ने उसे एक्सेप्ट किया है।
1: जैसे टोबैको है, टोबैको खैनी जो है वो भी सामाजिक
0: कॉमन हो गया,
1: कॉमन है, वो एक्सेप्टेबल है। मगर अब इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि लोग जो है इसके कारण जो है अपना नॉर्मल रूटीन वर्क नहीं कर पा रहे हैं। अभी जो जमशेदपुर में जो करंट प्रॉब्लम्स जो है जैसे गांजा
0: जी
1: और ब्राउन शुगर
0: जी,
1: ये ब्राउन शुगर का लत जो है ये बहुत ही जल्दी लोगों को अपने गिरफ्त में ले लेता है। ठीक है, ब्राउन शुगर बहुत फॉर्म्स में आता है, वो इंजेक्टेबल फॉर्म्स भी आता है जो कि मेडिकल फार्मेसी में मिलता है, या फिर ब्राउन शुगर या चरस जिसे हम लोग बोलते हैं तो उस क्रूड फॉर्म में वो मिलता है। ये जो है ये जमशेदपुर में, जमशेदपुर के आसपास में, सरायकेला हमारे जो आसपास
0: कोल्हान कह सकते हैं,
1: कोल्हान भी में है, यहाँ तक कि छोटे छोटे चाईबासा, चक्रधरपुर, इधर भी इसका बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया है। चूंकि ये छोटे छोटे पुड़ियों में अवेलेबल होता है, इजीली छुपाया जा सकता है, आप तुरंत उसका नशा करते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता कि आप नशा कर रहे हैं। मगर जैसे जैसे इसके आप

0: होते जाते हैं तो बच्चे जो है वो स्कूल ड्रॉप आउट कर रहे हैं। अब चूंकि ये पदार्थ जो है ये महंगा होता है,
1: अच्छा,
0: तो उसे लेने के लिए पैसे चाहिए और घर में वो कला होता है, उसके कारण माँ बाप से जबरदस्ती वो पैसा लेते हैं। अगर घर पे पैसा नहीं है तो फिर वो चोरी करते हैं, यहाँ तक कि मतलब टू दी एक्सट्रीम की मतलब वो लोग पुड़िया के लिए वो लोग मर्डर भी कर सकते हैं।
1: समाज में इसका दुष्प्रभाव
0: बहुत बहुत तेजी से दिख रहा है, चूंकि इधर पिछले 8-10 साल में काफी बढ़ गया है और इधर 1-2 साल में तो काफी ही ज्यादा। तो इसीलिए प्रशासन की ओर से भी बार बार इस चीज को इंश्योर करने की कोशिश करती है इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। NDPSA एक्ट है, ठीक है, तो जो नारकोटिक एंड प्रिवेंट साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है, तो उसके तहत इसमें बहुत कड़ी सजा का प्रावधान है। अगर आप नशा का पुड़िया जो है आपके यहाँ पाया जाता है या पेडलिंग करते हैं या फिर आपके पास अधिक मात्रा में है, तो आप सजा के हकदार हो जाते हैं।
1: जी, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो शारीरिक रूप से तो लोग सफर करते ही है इसमें, जो ड्रग के एडिक्ट हो चुके हैं, तो मानसिक रूप से कैसा दिखता है वो?
0: देखिए, कोई भी नशा है उसके दोनों दुष्प्रभाव होते हैं, मतलब शारीरिक होता है, मानसिक होता है। शारीरिक जो है, चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि वो नशा में लिप्त है तो वो खाना नहीं खा रहा है, धीरे धीरे उसका शरीर जो है कमजोर होता जा रहा है, उसकी वजन कम होती जा रही है। मानसिक रूप से ये होता है कि बहुत सारे नशे के पदार्थ जो है वो अपने आप में बिहेवियरल चेंजेस लाता है
1: जी,
0: और दूसरा है कि नशा के कारण साइकेट्रिक इलनेस या मानसिक बीमारी को भी वो उत्पन्न कर सकता है। तो ये दो चीजें हैं, एक है बिहेवियरल नशा के कारण, जैसे आदमी दारू ज्यादा पी लेता है तो उसके बाद वो ज्यादा बोलता है, जब उसकी नशा जो उतर जाता है तब वो शांत हो जाता है। ब्राउन शुगर और गांजा में प्रॉब्लम ये होता है कि ब्राउन शुगर का जो नशा जो है वो सामने दिखता नहीं है बहुत ज्यादा,
1: अच्छा,
0: मगर धीरे धीरे करके उसके मन में चिड़चिड़ापन होता है,
1: एंगर असर करता है,
0: एंगर इश्यूज बहुत आती हैं, उनका उनका जो रेजिस्टेंस है, रेजिलियंस है, वो कम होता जाता है। कैनबिस जो है, जिसको मतलब लोग बहुत ही सिंपल सब ये मानते हैं, मतलब बहुत ही दृष्टि से नहीं देखा जाता है, मगर कैनबिस का जो है, जो हम लोग देखते हैं जो युवाओं में खासकर, ये एक प्रकार का बीमारी ही बोल लीजिए, अमोटिवेशनल सिंड्रोम कराता है। अमोटिवेशनल सिंड्रोम नाम से ही आप समझ रहे हैं कि मोटिवेशन
1: खत्म हो जाता है।
0: तो जो लंबे समय तक कैनबिस या गांजा का सेवन या भांग का सेवन करते रहते हैं, उनमें कुछ करने की चाहत जो है, इच्छा जो है, वो धीरे धीरे कर कम होके खत्म हो जाती है। इसीलिए अभी हम लोग जो देख रहे हैं जो है 8th standard, 9th standard में बच्चे जो है जो गांजा 2-3 साल से पी रहे हैं, वो अपना मैट्रिक या इंटर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अमोटिवेशनल सिंड्रोम होता है। और दूसरा है, कोई भी नशा का पदार्थ जो होता है वो मानसिक साइकेट्रिक इलनेस को जन्म दे सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल डिप्रेशन हो सकता है, जो आदमी शराब लेता है, कैनबिस लेता है या फिर ब्राउन शुगर लेता है, उसे डिप्रेशन भी हो सकता है, उसे साइकोसिस भी हो सकता है। साइकोसिस मतलब जो मनोविदलता, जिसमें आदमी का समझ बूझ जो है वो खत्म हो जाता है, मतलब मेंटलनेस जो होता है। तो जो बहुत सारे लोग जो है ये नशा करते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनको कोई मेंटल बीमारी हो जाए। अब उसके बाद वो नशा अगर बंद भी कर देता है तो उसके बाद भी वो मेंटल इलनेस रह जाता है और उसका इलाज फिर आगे चलता रहता है।
1: इस क्षेत्र में बहुत सारे काउंसलर काम करते हैं, कहीं स्कूलों के बाहर या स्कूल जाके भी, तो काउंसलर का क्या मुख्य काम होता है इसमें, किस तरह से वो लोगों को समझाते हैं?
0: हमारे यहाँ काउंसलर्स तो है, मगर दे आर नॉट प्रॉपरली ट्रेंड। उनकी जो ट्रेनिंग जो होती है, जब तक वो एक हॉस्पिटल सेटअप में लोगों से मतलब पेशेंट को अगर नहीं देखते हैं तो वो चीज़ वो बहुत अच्छे से वो नहीं बता पाते हैं। मगर वो लोग क्योंकि काउंसलिंग सेशंस जो वो पढ़ते हैं तो वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जितने अच्छे तरह से समझा पाए। तो काउंसलर्स का मेन रोल ये होता है कि उस जो नशे का पदार्थ है उसका दुष्प्रभाव को समझाना, ताकि अगर वो उस चीज़ को समझा पाए तो वो बच्चों को उस चीज़ से दूर रख पाए, ताकि आगे जाके ये प्रॉब्लम ना हो। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का यहाँ पे, साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स जो है, उनका भी बहुत रोल होता है, क्योंकि नशा जो है वो एक एकल प्रॉब्लम नहीं होता है, ये बहुत सारे फैसेट्स हो सकते हैं। एक आदमी खुद नशा करना चाहता है, एक आदमी को उसके आसपास के जो पीयर प्रेशर हम लोग बोलते हैं कि उसके
1: उसके
0: दोस्त जो है उनके कारण वो नशे
1: जी
0: चलो ट्राई कर लो या एक बार देख लो, उनके कारण हो सकता है। घर पे अगर कोई नशा करता है तो वो देख के सीखता है, क्योंकि हम लोग सभी चीज देख के सीखते हैं। माँ पिताजी अगर नशा करते हैं तो उसे देख के उसे भी लगता है कि मैं भी ट्राई करके देखूँ, और दूसरा जो है कि हम लोग जैसे बता रहे थे कि सामाजिक

0: ये माँ पिताजी लड़ रहे हैं, तो बच्चे उस चीज़ से दूर हटने के लिए वो नशा करके आ जाता है ताकि उसको वो घर का जो माहौल है उससे वो दूर रहे। तो इसमें बहुत सारा फैसेट्स है, सिर्फ एक आदमी का इसमें रोल नहीं होता है, इसमें बहुत सारे लोग और समाज एज अ होल इसमें ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होती है।
1: अंत में एक संदेश उन लोगों के लिए जो नशे के आदी हैं और जिनका परिवार इससे जूझ रहा है।
0: देखिए, नशा जो है ये सिर्फ उस इंडिविजुअल के लिए परेशानी की कारण या सबब नहीं होता है, पूरे फैमिली को ये तोड़ सकता है। एक आदमी अगर किसी नशे में लिप्त होता है तो उसका पूरा फैमिली जो है वो बिखर सकता है। लोग छोड़ना चाहते हैं, बहुत सारे जो है वो नशा छोड़ना चाहते हैं, तो उन्हें हेल्प की ज़रूरत होती है। ये भी बीमार हैं, ठीक है, उन्हें मदद की ज़रूरत है, उन्हें डॉक्टरी मदद की ज़रूरत है, परिवार से सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बहुत बार ये होता है कि क्रिटिकल कमेंट्स जो होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे माँ पिताजी होते हैं या भाई बहन होते हैं, वो इतने परेशान हो जाते हैं कि वो अब जो नशा करता है उस पर वो भरोसा ही नहीं करते हैं। तो होता क्या है कि ये एक कैस्केडिंग इफेक्ट लाता है। बोला कि अच्छा, जब आप मान ही रहे कि हम नशा करते ही हैं, करके ही आए हैं, तो फिर हम नशा करके ही आएंगे। तो बहुत सारे कारण हैं, फैसेट्स हैं, तो उनको सभी को देखना है। और उनको एक सिर्फ लोगों को लगता है कि नहीं, ये बदमाशी कर रहा है, नशा कर रहा है, हो सकता है उसे प्रॉब्लम हो, उस नशे से बाहर निकलना चाह रहा है, मगर वो निकल
1: लेकिन
0: नहीं
1: नहीं
0: पा
1: पा
0: रहा
1: रहा
0: है।
1: है जी।
0: अगर हम उसे हेल्प करेंगे तो हो सकता है कि वो नशे से बाहर निकल जाए और एक नॉर्मल जिंदगी जी पाए और एक समाज में अपना एक योगदान दे पाए।
1: जैसा कि आपने कहा कि इन सब चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है और समाज को भी इसमें अहम भूमिका निभानी होगी ताकि जो लोग नशे के शिकार हैं वो धीरे धीरे इससे बाहर आएं और हमारे समाज में अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नशा या मादक पदार्थों का सेवन और इससे होने वाले दुष्परिणाम, इसी विषय पर आप सुन रहे थे डॉक्टर महेश हेमरम से ली गई भेंटवार्ता। पशुपालक मित्रों, बरसात का मौसम आने वाला है, ऐसे में आपके घर में जो पशु हैं उनका टीकाकरण करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बारिश के मौसम में नमी, जलजमाव और सड़ी गली घास के कारण जानलेवा संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा सबसे अधिक होता है। टीकाकरण से पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है, जिससे उन्हें महामारी जैसी मौसमी बीमारियों से बचाया जा सकता है और दूध उत्पादन के साथ साथ पशुओं की जान भी सुरक्षित रहती है। गलघोटू बारिश के दिनों में होने वाली एक घातक बीमारी है, जिसमें पशुओं को तेज बुखार आता है और गले में सूजन के साथ सांस लेने में तकलीफ होती है। इसलिए मानसून से पहले इसका टीका जरूर लगवाएं। लंगड़ा बुखार से पशुओं के पिछले या अगले पैर के मांस में सूजन आ जाती है और वे लंगड़ाते चलते हैं। इसके साथ ही बारिश के मौसम में पशुओं के खुर और मुंह में छाले हो जाते हैं, जिससे वो चारा नहीं खा पाते। इसलिए बारिश से पहले अपने पशुओं को इन बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण जरूर करवाएं। ध्यान रहे, हमेशा पूरी तरह स्वस्थ पशुओं को ही टीका लगवाएं, बीमार पशुओं को नहीं। टीके लगवाने से एक सप्ताह पूर्व पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा अवश्य दे देनी चाहिए ताकि टीके का असर अच्छा हो।

आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। कल यानी 27 जून 2026 शनिवार को वर्षा 0.8 मिलीमीटर होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रह सकती है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 65% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 31% होने की संभावना है। हवा की दिशा होगी पश्चिम से पूर्व की ओर तथा रफ्तार रहेगी 10 किलोमीटर प्रति घंटे। किसान भाइयों, इस मौसम में धान की पौधशाला जिन्होंने लगाया है वे बकानी रोग के लिए पौधशाला की निगरानी करते रहें तथा लक्षण पाए जाने पर कार्बेंडिज्म 2 ग्राम प्रति लीटर पानी घोलकर छिड़काव करें। धान की पौधशाला में यदि पौधों का रंग पीला पड़ रहा है तो इसमें लौह तत्व की कमी हो सकती है। पौधों की ऊपरी पत्तियां यदि पीली और नीचे की हरी हो तो यह लौह तत्व की कमी दर्शाता है। इसके लिए 0.5% फेरस सल्फेट के साथ 0.25% चूने के घोल का छिड़काव करें।

आप सुन रहे थे मिथिलेश कुमार मिश्रा से मैथिली लोकगीत। किसान भाइयों, बदलते मौसम या कटाई के समय हवा में उड़ने वाली धूल से फेफड़ों में संक्रमण या दमा का खतरा होता है। खेतों में रासायनिक दवाओं या कीटनाशकों के छिड़काव के समय हमेशा पूरी बांह के कपड़े, दस्ताने, गमबूट, फेस मास्क पहने ताकि त्वचा पर जहर का असर न हो। मौसम में अचानक बदलाव होने पर थकान और जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ जाती है। शारीरिक श्रम के बाद पर्याप्त नींद लें और थोड़ी देर छाया में बैठकर आराम करें। ध्यान रहे, पोषक तत्वों से भरपूर खाना आप खाते रहें। चलते चलते आपको बता दें कि बरसात शुरू होने से पहले यदि आप मछली पालन करते हैं तो मेढ़ों की मरम्मत, पानी को निकालकर तली की सफाई और पानी का पीएच मान सुधारने के लिए चूने का छिड़काव अवश्य करें। बारिश के दौरान पानी ओवरफ्लो होने से मछलियां बाहर ना निकले, इसलिए मेढ़ों को ऊंचा और मजबूत बनाएं। पानी आने की जगह और पानी जाने की जगह पर मजबूत जाली लगाएं ताकि बाहर से कोई अन्य मछली तालाब में ना आ सके या आपकी मछलियां बह ना जाए। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत का ये सफर बस यहीं तक। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। राजेश को दीजिए अनुमति। जोहार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 6:55 होने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से, और 7:10 पर होगा जिले में आजकल। कृपया प्रतीक्षा करें।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कृषि अनुसंधान को किसानों तक पहुंचाने पर दिया जोर। कहा, शोध की सफलता किसानों की आय बढ़ाने से तय होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने प्रमाण पत्रों में त्रुटि सुधार के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ाई। वर्ष 2024 तक की सभी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ। दुमका में कांग्रेस की ओर से निकाली गई हुल दिवस पदयात्रा। संथाल समाज को हुल आंदोलन के इतिहास, आदर्शों और अधिकारों से जोड़ने पर जोर। और CISCE जोनल कराटे चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण सहित जीते 8 पदक। और अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के 46वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय झारखंड के किसानों की आशाओं और ग्रामीण विकास का महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने लैब टू लैंड पर जोर देते हुए कहा कि कृषि अनुसंधान की सफलता शोध पत्रों से नहीं बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव से मापी जानी चाहिए। राज्यपाल ने बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और लाख उत्पादन में संभावनाओं का जिक्र करते हुए छात्रों से जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बनने का आह्वान किया और विश्वास जताया कि विश्वविद्यालय स्वर्ण जयंती तक देश के अग्रणी कृषि संस्थानों में शामिल होगा। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने की दिशा में राज्य सरकार एक और कदम बढ़ाने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 जून को रांची के टाना भगत स्टेडियम खेलगांव में आयोजित समारोह में 1042 चयनित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न जिलों से चयनित अभ्यर्थी उपस्थित रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले कल एक दिवसीय झारखंड दौरे पर रहेंगे। रामगढ़ स्थित राधा गोविंद यूनिवर्सिटी में दोपहर 1 बजे आयोजित एक विशेष सेमिनार में वो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सेमिनार का विषय आर्थिक असमानता और बेरोजगारी के संदर्भ में डॉ भीमराव अम्बेडकर का समग्र दृष्टिकोण रखा गया है, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और समावेशी विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, परमाणु अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है।

0: होगी। छात्र छात्राएं पंजीयन रसीद, प्रवेश पत्र, अंक पत्र, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मूल प्रमाण पत्र सहित अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों में नाम, जन्मतिथि तथा अन्य स्वीकृत त्रुटियों के सुधार के लिए निर्धारित अवधि तक आवेदन कर सकेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दुमका में आज आदिवासी कांग्रेस कमेटी की ओर से हुल दिवस पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में कांग्रेस नेता डॉ. प्रदीप बलमुचू सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर डॉ. बलमुचू ने कहा कि पदयात्रा का उद्देश्य संथाल समाज को हुल आंदोलन के इतिहास, उसके आदर्शों और सामाजिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के नमस्कार केंद्रीय पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने आज देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना की। उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक और विधिवत पूजन किया। पूजा के बाद श्री सिंह ने देश में अमन चैन, किसानों और मजदूरों की समृद्धि तथा बिहार झारखंड सहित पूरे देश की खुशहाली की कामना की। रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र के लारी के पास देर रात एक सवारी वाहन और ट्रक की आमने सामने की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। घायलों को रामगढ़ सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को रिम्स रांची रेफर किया गया। घटना के बाद कुछ देर के लिए सड़क जाम रही, जिसे प्रशासन के आश्वासन के बाद हटाया गया। आजसू नेता पीयूष चौधरी ने कहा कि इस स्थान पर लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं।
1: लगातार तीसरा दिन हादसा हो रहा है। कल 4 लोग मरे थे और लगातार एक एक दिन छोड़ के यहाँ पे हादसा होता आ रहा है। आज हमेशा से हमने प्रशासन को, ने यहाँ के बालों गांव के पब्लिक ने प्रशासन को कोऑपरेट किया है कि भाई रास्ता ना रोका जाए, निकला जाए। लेकिन
0: मुहर्रम के अवसर पर कल रांची जिले में ताजिया और अखाड़ा जुलूसों के कारण यातायात प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी और निजी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है। जिला उपायुक्त मंजुनाथ भजेंद्र के निर्देशानुसार केवल पूर्व निर्धारित परीक्षाएं अत्यंत आवश्यक होने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचना देकर कराई जा सकेंगी। प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधन, अभिभावकों और नागरिकों से शांति और सौहार्द बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। झारखंड में आज मौसम आंशिक रूप से धूप वाला और उमस भरा रहा। हालांकि राजधानी रांची सहित कुछ इलाकों में आंधी के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार कल राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं 28 जून से पूरे झारखंड में मॉनसून फिर से पूरी तरह सक्रिय होने का पूर्वानुमान है, जिससे कई जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। बिशप वेस्टकॉट गर्ल्स स्कूल डोरंडा में आयोजित CISC जोनल कराटे चैंपियनशिप में इंटरनेशनल मार्शल आर्ट एकेडमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण सहित कुल 8 पदक जीते। लोरेटो कॉन्वेंट की मारिया लवलिन खेस, वृष्टि मोनिका क्रिकेटा और शाइनी शिमोना टुपो ने स्वर्ण पदक जीते। वहीं बिशप वेस्टकॉट नामकुम की मिस्टी कुमारी और बिशप स्कूल बहुबाजार के प्रीत सोनी ने भी स्वर्ण पदक अपने नाम किए। अध्यक्ष अनिल किस्पोट्टा ने कहा कि अब खिलाड़ियों को बिहार में होने वाली रीजनल कराटे प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कृषि अनुसंधान को किसानों तक पहुंचाने पर दिया जोर। कहा, शोध की सफलता किसानों की आय बढ़ाने से तय होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने प्रमाण पत्रों में त्रुटि सुधार के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ाई। वर्ष 2024 तक की सभी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ। दुमका में कांग्रेस की ओर से निकाली गई हुल दिवस पदयात्रा, संथाल समाज को हुल आंदोलन के इतिहास, आदर्शों और अधिकारों से जोड़ने पर जोर। और

0: सीआईएससी जोनल कराटे चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण सहित जीते 8 पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्रस्तुत है जिले में आजकल

0: इस अंक में आप सुनेंगे पूर्वी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे जमशेदपुर संवाददाता।
1: जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के तत्वाधान में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिरसा नगर किफायती आवास परियोजना के लाभुकों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कुल 322 लाभुकों को मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद सांसद विद्युत वरण महतो एवं जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू के हाथों नए आवास की चाबी सौंपकर गृह प्रवेश कराया गया। इस दौरान विद्युत वरण महतो ने लाभुकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना जरूरतमंद परिवारों को सम्मानजनक जीवन और पक्की छत उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
2: आज एक ऐतिहासिक दिन में, ऐतिहासिक समय में लगभग 300 से ज्यादा लाभुकों को आज मकान का चाबी दिया जा रहा, इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी को और राज्य सरकार को सभी को मैं अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ।
1: विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर जमशेदपुर प्रधान डाकघर परिसर में आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। डाक विभाग द्वारा आयोजित इस शिविर में डाक कर्मियों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। डाक विभाग की ओर से नियमित रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान वरिष्ठ डाक अधीक्षक उदय भान सिंह ने कहा कि रक्तदान किसी जरूरतमंद को नया जीवन देने का माध्यम है।
3: इसका थीम है इस वर्ष का 2026 का मानवता की एक बूंद जिंदगियां बचाएं। तो अगर हमारे डाक परिवार के स्टाफ से ग्रामीण डाक सेवकों जो रक्तदान करेंगे उनसे अगर किसी की जिंदगी बचती है तो इससे बड़ा दिन मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता है।
1: जमशेदपुर के साक्षी स्थित बंगाल क्लब की आचार्य नंदलाल बोस कला दुर्गा में 3 दिवसीय सिमूल 26 चित्रकला एवं मूर्तिकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें 40 चयनित कलाकारों की चित्रकला और मूर्तिकला कृतियां प्रदर्शित की गई, जिनमें प्रकृति, समाज, संस्कृति और मानवीय भावनाओं को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया। इस दौरान आयोजक समिति के सदस्य शुभेंदु विश्वास ने बताया कि
4: हमारी ये जो एग्जीबिशन आप देख रहे हैं ये आर्टिस्ट फोरम की तरफ से एक वर्कशॉप किया गया था साक्षी हाई स्कूल में 8 तारीख और 9 जून को, जिसमें 40 कलाकारों ने भाग लिया था। उसमें 3 स्कल्प्टर भी थे जिन्होंने अपना काम किया है और उसी का जो काम हुआ है वही हम दर्शक के लिए एग्जिबिट किया जा रहा है। अभी हमारे पास 38 पेंटिंग्स है और 3 स्कल्प्चर है। एक जनता के सामने में अपना प्रोडक्ट को लेके नहीं आएंगे, क्रिएटिव काम को लेके नहीं आएंगे, वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते, अपने आप को इम्प्रूव भी नहीं कर सकते हैं।
1: जमशेदपुर में नशा मुक्त भारत अभियान की औपचारिक शुरुआत जिला मुख्यालय से की गई। इस अवसर पर पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त राजीव रंजन ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेगा तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण का संदेश देगा। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर।
0: अभी आप सुन रहे थे पूर्वी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

जिले में आजकल। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 7:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए बांग्ला कार्यक्रम।

0: प्रदान करते रहने के लिए हमेशा पानी पीते रहें। तरबूज, खीरा, नारियल पानी, संतरा और दही, ये सब ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनको अपने आहार में अगर हम शामिल करें प्रतिदिन, तो शरीर में तरल पदार्थों का एक संतुलन बना रहता है और प्राकृतिक और प्रभावी तरीके से हमारे शरीर को कभी भी जल की कमी नहीं होती है। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर का लगभग 50-70% हिस्सा जल से बना होता है। कोशिकाएं, रक्त, मांसपेशियां, उत्तक और मस्तिष्क, ये सभी तभी ढंग से काम कर सकते हैं जब शरीर में जल की मात्रा संतुलित रूप से बनी रहे। गर्मियों के मौसम में कई बार पसीने के कारण भी हमारे शरीर से 2% पानी निकल जाता है। इससे सिरदर्द, थकान, ऐठन और लो बीपी की भी समस्या होती है और कभी कभी तो हमें बेहोशी और इल्यूजन जैसे प्रॉब्लम्स भी लगने लगते हैं। हमेशा डॉक्टरों ने भी सलाह दिया है कि हम प्रतिदिन जल का सेवन करें और 20% से अधिक हिस्सा हमारे भोजन में जो हो वो पेय पदार्थ का हो। पानी में फल और सब्जियों को डालकर भी हम जल का स्वाद बढ़ा सकते हैं। तरबूज, लीची, खीरा और पुदीना जैसी जड़ी बूटियां हैं जो एक पसंदीदा विकल्प हैं। इन्हें मसल कर इनका स्वाद निकालें और फिर इन्हें जल में डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। उसके बाद इसे पीने से स्वाद भी आएगा और अच्छा लगेगा। श्रोताओं, हम ये कैसे जाने कि हमारे शरीर में जल की कमी हो रही है? तो अगर पेशाब का रंग गाढ़ा हो और गहरा हो तो यह इस बात को बताता है कि हमें और ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। मौसम तो बदलते रहते हैं, पर मौसम के अनुसार अगर हम भी अपने खान पान को परिवर्तित करते रहें, चेंज करते रहें, तो हम सदैव स्वस्थ रहेंगे और मौसम संबंधी बीमारियों से भी बचे रहेंगे। श्रोताओं, नवजात शिशु का आंगन में आना और उसका खिलखिलाना हर परिवार के लिए एक खूबसूरत अनुभव होता है, पर शिशु जो अब तक माँ के गर्भ को ही अपनी दुनिया समझ रहा होता है, जब वो बाहर आता है तो उसे एक अलग तरह का मौसम और एक अलग तरह का अनुभव महसूस होता है। गर्मियों में जब नवजात शिशु का जन्म होता है तो उसे गर्मियों की उमस से भी परेशानी होती है और ये परेशानी सिर्फ बच्चे की नहीं होती बल्कि बच्चे की माँ और परिवार के सभी सदस्य के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है कि इस गर्मी के उमस और घुटन का असर हमारे नवजात बच्चे पर न पड़े। आज इसी विषय पर हमने भेंट वार्ता लिया है जो बाह्य ध्वन्यांकन पर आधारित है और इस भेंट वार्ता में इस विषय पर हमें जानकारी देंगी होम्योपैथी की जानकार डॉक्टर लिपिका बेरा।
1: मेरा नाम डॉक्टर लिपिका बेरा है। हम 15 साल से इसमें जुड़े हुए हैं।
0: सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि प्रसव के समय माँ को किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए अगर गर्मी का मौसम हो।
1: गर्मियों में होने से क्या होती है ना, सबसे पहले जब लेडीज को जो डिलीवरी वगैरह जो होती है उसमें क्या है ना, उनको सबसे पहले पानी का कमी हो जाता है और जब वो लोग को पेन स्टार्ट होता है डिलीवरी का टाइम में, उसमें क्या है ज्यादा तकलीफ के कारण पानी का और थोड़ा कमी होने लगता है। कभी कभी बच्चा उसका अंदर में क्या होता है ना, बच्चा का भी अगर लेडीज पानी कम पीती है तो अंदर में अगर पानी कम रहता है प्लाजेंटा का तो बच्चा को भी थोड़ा मूवमेंट में दिक्कत होता है। तो उसमें क्या होता है बच्चा का कभी उल्टा हो जाता है या तो फिर अम्बिलिकल कॉर्ड उसका गर्दन में आ जाता तो सांस का तकलीफ हो जाता है, ये सब प्रॉब्लम लेडीज को होता है। तब क्या होता है नॉर्मल डिलीवरी होने वाली भी थी सीजरियन करना पड़ता है।
0: तो ऐसे समय में हम बच्चे की देखभाल किस तरह से करें कि गर्मियों के मौसम में उन्हें इस तरह की कोई समस्या ना हो।
1: बच्चे को जब होने से पहले माँ को थोड़ा ज्यादा पानी या लिक्विड डाब का पानी या सूप इस तरह का लेते रहना पड़ेगा ताकि जब उसका जो प्लाजेंटा में पानी भरा रहेगा तो बच्चा जब मूवमेंट करेगा उसको दिक्कत कोई तरह का नहीं होगा इस तरह से। और अगर बच्चा डिलीवरी हो गया
0: जी,
1: तो फिर बच्चे को एकदम पतला कॉटन का सूती कपड़े में ढक के रखना पड़ेगा और एसी और जो फैन का, पहले का लोग क्या करते थे एसी फैन

0: बंद कर देते थे क्योंकि ठंडा लग जाएगा, लेकिन अभी का जो ये जून का महीना में, जून महीना इस महीना में अगर हुआ डिलीवरी बच्चा होने के बाद, बच्चे को पतला कपड़ा पहना के सर में कॉटन का टोपी लगा के एसी और हवादार रूम में रखना चाहिए, लेकिन रूम को थोड़ा सा हवा से थोड़ा सा साइड हटा के।
1: ये जो गर्मी का मौसम है, ये उमस वाला मौसम है, तो इसमें क्या हम बच्चे को नहला सकते हैं? और नवजात बच्चे को जब हम नहलाते हैं तो हमें किस तरह की सावधानी रखनी होगी?
0: इस समय में अगर बच्चा को नहलाना है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया या फिर जो हल्का जो एकदम पतला ऑयल होता है वो मालिश करना चाहिए, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल वगैरह अगर मोटा तेल लगाते हैं ना, क्या ना बच्चा को रसस निकलने का डर रहता है, क्योंकि स्किन बहुत सेंसिटिव होता है ना, तो इसलिए कोकोनट ऑयल या कोई भी पतला ऑयल जैसे गर्सन बेबी इस तरह का लगा के उसको फिर पतला कपड़ा में थोड़ा सा पोंछ देना पड़ता है, उसके बाद पानी से नहलाना पड़ता है।
1: नवजात बच्चे को भी हम बहुत देर तक सिर्फ कपड़े से ढक कर तो नहीं रख सकते, तो हमें उन्हें कपड़े पहनाने होते हैं, तो चूंकि वो बिल्कुल नवजात होते हैं, तो ऐसे में आप क्या सलाह देंगी, किस तरह के कपड़े हम नवजात बच्चे को पहना सकते हैं?
0: कपड़ा एकदम पूरा कॉटन का होना चाहिए, पूरा कॉटन, जैसे न्यू नहीं, न्यू को पहले दो बार तीन बार आप धो दीजिए, धो के जब सॉफ्ट हो जाता है, या तो कोई पतला पुराना कपड़ा हो उसका कपड़ा उसमें उसका ड्रेस सिलाई करके उस तरह का पहनाना चाहिए, ताकि बच्चा को सोने से रफेस नहीं हो।
1: डॉक्टर साहब, जब तक नवजात अस्पताल में रहता है तब तक तो सभी चिकित्सकों की निगरानी में रहता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, पर जब माँ बच्चे को अस्पताल से घर लेकर आती है तो ऐसे में आप माँ को क्या सलाह देना चाहेंगी कि वो घर पर किस तरह से अपने बच्चे का ख्याल रखे?
0: घर में जब लेके आती है तो माँ को बोलते हैं कि अपने थोड़ा सा लिक्विड डाइट ले, और बच्चे को हर दो दो घंटा में जितना जितना उसको जरूरत है उतना फीडिंग कराते रहे, ताकि बच्चे को तो बाहर ही कोई पानी नहीं दे सकते है ना, तो माँ का जो दूध है उसको जैसे कि हर दो दो घंटा में फीडिंग कराते रहे, ताकि उसका जो बॉडी का वाटर जो है वो कम ना हो, और हवादार घर में रूम में रखना चाहिए, लेकिन हवा का पूरा संपर्क में नहीं रख के थोड़ा साइड में रखना चाहिए। अगर आपको पाउडर जैसे आप कोई हगीज वगैरह पहनाते हैं बेबी, तो फिर उस जगह में आप थोड़ा सा पाउडर छिड़क के तो पहनाइए, ताकि रशेस ना निकले। ऐसे बॉडी में एकदम इतने छोटे बच्चे को पाउडर ना लगाए तो अच्छा ही है। हाँ, कभी कभी अगर बच्चे को कोई रशेस वगैरह निकलता है तो फिर लगाना पड़ता है, नहीं तो इसे नहीं लगाने से ठीक है।
1: गर्मियों के कारण कई बार ऐसा भी हुआ है कि माँ जो गर्भवती है उसके शरीर में भी खुजली की शिकायत या त्वचा में किसी तरह की समस्या, या बच्चे के त्वचा में भी और उसके शरीर में भी खुजली या फुंसी फोड़े इत्यादि की दिक्कतें आने लगती हैं, तो इस विषय में आप क्या सलाह देंगी?
0: तो माँ को हम यही सलाह देते हैं कि माँ अपना थोड़ा सा क्लीन रहे, अच्छा एकदम थोड़ा सा डेटॉल वाटर में या फिर डेटॉल सोप में नहाए, और वाटर थोड़ा इंटेक ज्यादा करे, डाब का पानी वगैरह पिए, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो तो रसेस ना निकले, और ज्यादा गरम गरम कोई फूड ना खाए, नॉर्मल फल वूल ये सब ले, और बच्चा को भी अगर रसेस हो तो हल्का सा गीला पतला कॉटन को भिंगा के उसको पोछे, पोछ के थोड़ा सा हल्का बेबी पाउडर है वो लगाए। बच्चे को जैसे कि मम्मी अगर इस समय में ज्यादा कोई जंक फूड या बच्चा होने के बाद में जंक फूड या कुछ ज्यादा गरम गरम चीज खा ले, तो अब पहले के लोग थे क्या ना, वो जो बच्चा होने के बाद सब गरम गरम बना बना के देते थे, में बोला जाता है कि आप नॉर्मल डाइट में सब चीज मिला के खाइए, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन आयरन हो गया, सब मिला के सब तरह का खाइए, लेकिन बाहरी जंक फूड वगैरह या बाहर का कोई तरह का ऐसा कुछ मत खाइए, ताकि बच्चे को फिर लूज मोशन डायरिया वगैरह ना हो।
1: जी, गर्मियों का मौसम ऐसे तो सामान्य व्यक्ति के लिए भी कभी कभी असहनीय हो जाता है, पर जब महिला गर्भवती हो या उसके पास नवजात बच्चे की भी जिम्मेदारी हो, तो ऐसे में इस मौसम की चुनौतियों से जूझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर लिपिका बेरा हमसे जुड़ी और इस विषय पर उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें बताया कि हम किस तरह से बच्चे को भी स्वस्थ रख सकते हैं और गर्भवती माताएं भी खुद को बेहतर फील करा सकती हैं इन गर्मियों में। डॉक्टर साहब, आप हमारे श्रोताओं से जुड़ी इसके लिए

ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, विषय नवजात शिशु की गर्मियों के मौसम में देखभाल, और इस विषय पर हमें जानकारी दे रही थी होम्योपैथी की डॉक्टर लिपिका बेरा। श्रोताओं, नशा मुक्त समाज हो तभी व्यक्ति के जीवन में आनंद और शांति बनी रहती है। जीवन सुंदर तो है, पर इसका अनुभव करने के लिए हम सभी मनुष्य का भी मन से शरीर से स्वस्थ रहना जरूरी है। तभी तो सत्यम शिवम सुंदरम का अनुभव हम कर पाएंगे और हमारी चेतना भी शुद्ध रहेगी। और इसलिए जरूरी है कि हम समाज में व्याप्त नशा वाली समस्या से खुद को दूर रखें। मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के लिए सरकार अभियान चला रही है ताकि जन समुदाय को नशा और किसी भी मादक द्रव्यों के दुरुपयोग से रोका जा सके। आज मानवीय मूल्यों को नशा का सेवन और अवैध तस्करी से चुनौतियां मिल रही हैं, और इसलिए इसके खिलाफ 26 जून को यानी आज के दिन हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं जो जन समुदाय को मादक द्रव्यों के दुरुपयोग से रोकती है। ये दुखद है कि पिछले कुछ दशकों में वैश्विक स्तर पर यह समस्या और बढ़ गई है। कोकीन का उत्पादन, जब्ती और उपयोग लगातार बढ़ रहा है, और साथ ही कृत्रिम दवाओं के निर्माण की कम लागत और पकड़े जाने के कम जोखिम अवैध मादक पदार्थों के बाजारों में इनकी बढ़ती उपलब्धता में योगदान दे रहे हैं। इन चुनौतियों का जवाब तभी हम दे पाएंगे जब हम सभी एक दायित्व बोध वाले नागरिक बनेंगे और समाज को इस विषय के प्रति जागरूक करेंगे। इन खतरों के कारण देश के युवा वर्ग पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है, समाज में भी शांति नहीं रहती है, और एक सतत कल्याण जो हमारी विचारधारा है वह भी बाधित होती है। नशे की समस्या हमेशा मानवीय पीड़ा का मुख्य कारण दिखाई देता है। इसका सबसे बुरा प्रभाव कमजोर वर्ग और युवाओं पर पड़ता है। इसके कारण परिवार की महिलाओं और बच्चों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो श्रोताओं, इस दिवस का हम अर्थ समझें और इस सामाजिक कलंक को दूर करने का प्रयास करें। और श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम कल्याणी से मुझे दीजिए विदा। अपनी सेहत का ख्याल रखें।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम कल्याणी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और आपने ट्यून किया है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

रॉक स्टार। इस फिल्म का ये गीत आपने सुना एआर रहमान, जावेद अली और मोहित चौहान की आवाजों में। गीत लिखा था इरशाद कामिल ने और संगीत निर्देशन किया था एआर रहमान ने।

सुर फिल्म का ये गीत आपने सुना लकी अली की आवाज़ में। संगीत निर्देशन किया था MM कीरावाणी ने और गीत लिखा था मुक्तिदा हसन निदा फाजली ने।

ब्लू फिल्म का ये गीत आपने सुना राशिद अली की आवाज में। गीत लिखा था अब्बास टायर वाला ने और संगीत निर्देशन किया था ए.आर. रहमान ने। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं श्रोताओं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।

0: पीको फिल्म का ये गीत आपने सुना अनुपम रॉय की आवाज में। इसके गीतकार और संगीतकार थे अनुपम रॉय।
1: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरी यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मन भावन कार्यक्रम से।

0: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
1: ज्ञान विज्ञान
2: इतिहास के पन्नों से,
1: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
0: मौसम का मिजाज,
1: अपने शहर की खबरें,
2: बातों मुलाकातों के साथ
0: सुरीला मनोरंजन
1: और भी बहुत कुछ।
0: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में
2: दिन के 11:05 से 12 बजे तक
1: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
0: नमस्कार जमशेदपुर।

आशाएं। इस फिल्म का ये गीत आपने सुना शफकत अमानत अली की आवाज में। गीत लिखा था मीर अली हुसैन ने और संगीत निर्देशन किया था सलीम सुलेमान सलीम ने।

गुजारिश फिल्म का ये गीत आपने सुना कुणाल गांजावाला की आवाज में। गीत लिखा था विभू पुरी ने और संगीत निर्देशन किया था संजय लीला भंसाली ने। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं श्रोताओं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।

0: एक विलेन। इस फिल्म का ये गीत आपने सुना श्रद्धा कपूर और अंकित तिवारी की आवाजों में। संगीतबद्ध किया था इसे अंकित तिवारी ने और गीत लिखा था मनोज मुंतशिर ने। और इसी गीत के साथ ही श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
1: हेलो डॉक्टर,
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 MHz पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
1: हेलो डॉक्टर,

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 8:45 होने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित समाचार संध्या और न्यूज़ एट 9 होगा रात्रि 9 बजे। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमरीका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे। और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे।

0: सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा, सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा, और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
0: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
1: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1 करोड़ 18 लाख किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्ताद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी।

0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक के नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10,10,00,000 रुपए और घायलों को 1,00,000 रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशूरा मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे।

0: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। विशु के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। यूएस ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू तोंग को हराया तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और यूएस ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदाम्बी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Home Minister Amit Shah launches 3-year vision document for narcotics control, calls for better coordination and use of technology to strengthen anti-drug campaign. Center to deploy 1,000 advisory personnel across the country and upgrade trade portal to maximize benefits of India-UK trade agreement. Death toll in Venezuela earthquakes rises to 589. India sends 2 Air Force planes with emergency relief material. US and Iran agree to establish direct military communication channel to reduce risk of further conflict, says US Vice President J.D. Vance. Indian shooters finish at the top in ISSF Junior World Championship in Germany with 24 medals, including 7 gold. And in US Open Badminton, India's Ronak Chauhan stuns top seed Cho Tin Chen of Chinese Taipei to enter quarterfinals of men's singles. Kidambi Srikanth and 3 women shuttlers also reach the quarters. And now the news in detail. Home Minister Amit Shah today laid a detailed roadmap to achieve the vision of a drug-free India. During a meeting organized by the Narcotics Control Bureau, the Home Minister launched the vision document on narcotics control from 2026 to 2029. Earlier, addressing the 10th apex level meeting of the Narco Coordination Center in New Delhi, the Home Minister called for a united war against drugs, saying that the drug menace threatens national security, social stability, economic interests, and the future of youth and the country. He urged spiritual leaders, youth and mothers.

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बजे हैं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

रुदाली फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा था गुलजार ने और संगीत निर्देशन किया था भूपेन हजारिका ने।

साथ साथ इस फिल्म का ये गीत आपने सुना जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में। संगीत निर्देशन किया था कुलदीप सिंह ने और गीत लिखा था जावेद अख्तर ने। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं श्रोताओं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।

फिल्म का नाम था लेकिन। आवाज थी लता मंगेशकर की, शब्द रचना थी गुलजार की और संगीत निर्देशन था हृदयनाथ मंगेशकर का।

किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना फिल्म कलाकार का ये गीत। गीत लिखा था इंदिवर ने और संगीत निर्देशन किया था कल्याण जी आनंद जी ने।

छोटी सी बात। इस फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत निर्देशन किया था सलील चौधरी ने और गीत लिखा था योगेश ने।

नितिन मुकेश, शब्बीर कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में आपने सुना फिल्म तेजाब का ये गीत। गीत लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीत निर्देशन किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इसी गीत के साथ श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। और अब शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आनंद ले पंडित कार्तिक कुमार के सितारवादन का। राग है आभोगी कान्हड़ा।

आप सुन रहे थे पंडित कार्तिक कुमार का सितार वादन, राग था अब होगी कान्हड़ा, और आइए अब सुनते हैं इन्हीं का सितार पर बजाया पूर्वी धुन।

आप सुन रहे थे पंडित कार्तिक कुमार का सितार पर बजाया पूर्वी धुन। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। रात्रि के 11 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।